उसने फौरन तलाश करना शुरू किया मस्जिद के बाहर के, देखूं दूर पार, देखा तो एक वहां से नजसुलैन कुत्ता जा रहा था और उसके मुंह पे एक सफेद निशान था। उसने कहा हो ना हो, इस कुत्ते ने इसमें मुंह डाल दिया। अब वो दही फेंकने लगा, मौला एकदम से बाहर आए, कहा कि सुन दही को मत फेंकना, ये पाक है। गौर कीजिएगा, सब गौर से सुनेंगे, दाद में आखिर में लूंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। मौला ने कहा कि इस दही को मत फेंकना, ये नजिस नहीं है, पाक है। कहा कि याली दही पे निशान है और सामने मुझे एक नजसुलैन जानवर नजर आ रहा है, उसके भी मुंह पे निशान है, तो मैं कैसे आपकी बात मान लूं। मौला ने कहा मेरा फैसला मान ले, इमामत की बात को ना मानने के अवारिस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, गलत दवा खा लो तो रिएक्शन कर जाती है, इमाम की बात ना मानो तो रिएक्शन हो जाएगा, तेरे ईमान पे ऐसा असर पड़ेगा, जिंदगी पे असरात बुरे पड़ेंगे, मेरी बात को मान ले, तू वो नहीं जानता जो मैं जानता हूं। नहीं, उसने कहा नहीं, उसने फौरन उठा दही फेंकी और घर चला गया। कि मैं कैसे मान लू जब मैं खुद देख रहा हूं। मौलाना ने कहा तूने देखा कब है, देखा कब है, तू तो मस्जिद के अंदर था, तू अगर दीवार के बाहर देख सकता होता तो मैं तुझे कहता ही ना। अब चंद दिनों बाद वो एक बकरे को ज़िबह कर रहा था, छुरी हाथ में थी, ज़िबह कर रहा था झाड़ियों के नीचे और अचानक आवाज है कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। दौड़ता हुआ उठा, का क्या हुआ, उनका कातिल तो तुम हो, हाथ में छुरी है, कपड़ों पे खून लगा हुआ है, पता नहीं बात है, पता नहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, हाथों पे खून था, हाथ में छुरी थी, खून बह रहा था, छुरी से भी हाथों पे खून लगा हुआ था। उसने कातिल कहा तुम कातिल हो, कत्ल हो चुका है, हमने देखा एक छत के ऊपर बाला खाने पे कत्ल हो गया और तुम कातिल हो, हाथ में छुरी है। अब वो परेशान हुआ, कहा ठीक है मैं कातिल हूं, अगर कहता कातिल नहीं हूं तो लोग मार मार के जान से मार देते। लोगों ने पकड़ा, कहा कि भाई कातिल भी मौजूद है, मक्तूल का लाशा भी है, पकड़ के ले गए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मौला ने फौरन मुस्कुरा के देखा, कहा मैंने कहा था ना, कहा उस दिन मैंने कहा था ना बात मान ले, उस दिन ना मानने का ये आज नतीजा, अब सबक मिल गया, का मौला मुझे माफ कर दे, उस दिन आप पे शक किया था, आज कत्ल केस केस के अंदर फंस गया। मौला ने कहा अभी रुक जा, फैसला हो जाएगा। जैसे आप खामोश बैठे ना, बहुत से बहुत परेशान, बिल्कुल सकते में खड़ा था, इतने में जनाब इमाम हसन ने मुझसे आए, मौला ने आते हुए देखा, कहा कि मेरा बेटा इसका फैसला करेगा। फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरा बेटा करेगा। इमाम हसन ने मुस्तफा से कहा कि सबको पेश किया जाए, कहा भाई अपनी बात को पेश कर, कातिल को लेके आए, कहा भाई ये कातिल है। मौला ने कहा कि क्या बात, कहा कि मैं एक जानवर को ज़िबा कर रहा था, अचानक आवाज सुने मैं बाहर आया तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कहा तूने क्यों कहा कि तू कातिल है, कहा एक मरतबा कहा इस परेशानी में कहीं मुझे कत्ल ना कर दे, मार मार के जान से ना मार दे, नहीं मानूंगा तो मारेंगे, मैंने इसीलिए घबराहट में कह दिया। इतने में एक और आदमी आया, उसने कहा कि नहीं कातिल मैं हूं, वो मेरा आका था, जुल्म कर रहा था, मैंने उसे मारा, वो मर गया, मैं फरार कर गया था, अभी सुनने में आया कि कोई बेगुनाह पकड़ा गया है, इसलिए जान बचाने आया हूं। मौला ने कहा मैंने दोनों को बरी कर दिया, ये दोनों जा सकते हैं। इमाम हसन मुस्तफा ने फैसला किया, कहा दोनों जा सकते हैं। अब सब परेशान हो गए, कहा जब एक कत्ल हुआ, दो कातिल हैं, दोनों जा कैसे सकते हैं, सारा मजमा परेशान। मौला ने इमाम अमीरुल मोमिनीन ने कहा मेरे बेटे ने फैसला सही दिया, पूछो तफसील क्या है। फैसला बिल्कुल सही है, क्या तफसील पूछो, ये है कल्बी लकल्बकुम सल्म, क्या फैसला बिल्कुल सही है, क्या पहले वाले ने कत्ल किया था, वो वाजिबुल कत्ल था कत्ल के बदले में, लेकिन फिर उसने एक और को कत्ल होने से बचाया। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन व फसादिन फिल अर्द फका अन्नमा कतल नासा जमिया, जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, कब जिसने एक आदमी को बचाया उसने पूरी इंसानियत का बचाया। गौर फरमा दे जाएंगे, एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम के फैसले पे शुभा भी आ जाए। अलबत्ता एक बात यहां पे कहते चलूं, मौला खुद फरमाते हैं कि वो अफराद जो हमारी बात का तहम्मुल ना रखते हों, जिनकी मारफत का इतना दर्जा ना हो कि हमारी बात को मान सकें, उन्हें मत बताना, अगर वो रद्द करेंगे वो भी गुनाहगार होंगे और तुम भी गुनाहगार हो गए, तुमने ऐसे को समझाया कि जो समझ नहीं सकता था। कब मारफत के दर्जात मुख्तलिफ हैं, वो जो सलमान समझे अब उधर भी नहीं समझ सकते, पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं।
کہ وہ جو سلمان نے سمجھ لیا ہے ابو ذر میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ جتنی تھی وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے اس سے آگے جا نہیں سکتے

की जरूरत ही नहीं है। सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और नमाज में यही दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दलील है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सबसे अफजल है। कैसे? ये दुरूद, यही सलावात, ये दलील है कि अहले बैत सबसे अफजल हैं। क्यों? तवज्जो तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कोई बीच में वास्ता नहीं है। आले इब्राहिम ने कहा, आले इमरान ने कहा, आले किसी नबी का नाम नहीं लिया गया, कहा मोहम्मद और आले मोहम्मद, किसी नबी का बीच में नाम नहीं है। अगर होता तो वही वास्ता होते, वो अफजल होते। यहां पे फौरन का अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद पे दुरूद हो और उनकी आल पे, ये दलील है। दरअसल बात दलील है कि आले मोहम्मद सबसे अफजल है, कोई वास्ता नहीं है बीच में। अगर मैं पहुंचा पाया हूं, ये वक्त नहीं है कि तफसील में जा सकूं। ये सिर्फ हर नमाज के अंदर सारे मुसलमान जो दुरूद पढ़ते हैं उसमें अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि मोहम्मद और उनकी आल पे दुरूद हो, उन पे सलावात हो, उन पे सलाम हो। क्यों? क्योंकि उनसे अफजल अगर कोई होता तो बीच में उसका वास्ता होता। किसी का वास्ता ना आना इस बात की दलील है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सबसे अफजल है। अज़ान के नामी पैगंबर इस्लाम मेराज पे का वाक़िया आपने सुन रखा होगा, तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, खुद इब्न हजर मक्की ने लिखा है, जिन्होंने किताब जो लिखी है उसके अंदर बहरहाल एतराज़ात ये हैं कि मैंने शियों के खिलाफ लिखी है। वहां पे लिखा, अल्लाह बाज़ू का काम लेता तो किससे काम ले लेता, जो किताब हमारे खिलाफ लिखी गई उसमें लिखा इब्न हजर मक्की ने, और जुमला लिखा कि पैगंबर जब मेराज पे गए तो जनाब जिब्राइल से कहा कि रुक जाओ जरा, मैं इस फरिश्ते से मिलना चाहता हूँ। कहा ये कौन? कहा फरिश्ता। का कितने हाथ? का 1000 हाथ थे, हर हाथ में 1000 उंगलियां थी। पैगंबर कहते हैं मैंने आगे बढ़ के सवाल किया, क्या करते हो तुम? कहा या रसूल खुदा जब बारिश होती है ना तो सारे कतरे गिन लेता हूं, जब तूफान चलता है तो सारे रेत के जर्रात को गिन लेता हूं, आंधियां हो तो पत्ते जब गिरते हैं तो सारे पत्ते जितने गिरते हैं जमीन पे सब गिन लेता हूं। पैगंबर ने कहा कौन सी चीज है जो तू नहीं गिन पाता? क्या जब आपकी उम्मत आप पर और आपकी आल पे दुरूद भेजती है तो उसके सवाब को मैं नहीं गिन पाता। तवज्जो फरमाइए जाने के नाम है। इमाम ने यहाँ पे हर जाविये से सैयद शहदा पे सलाम भेजा है। आए जरा मैं एक जुमले को पेश कर रहा हूँ, और मेरे जहन में बहुत से मतालब थे लेकिन मजालिस 10 होती हैं, उसके अंदर जितना इंसान मतलब पेश कर सकता है मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मतालब पेश करूँ। मैं जनाब सैयद शहदा की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि वो मेरे टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, और ख़ुद मौला आप लोगों का यह मजालिस में आना कबूल फरमाएँ, और आज आप सब लोग मौला को और जनाब सैयदा को आज जनाब सैयदा की पोती सैयद शहदा की बेटी का पुरस्कार देने के लिए आए हैं। लेकिन जुमलों को पेश करूँगा, थोड़ा फ़ज़ाइल के आखिरी जुमले सुन लीजिए कि आप यहाँ पे दुरूद सलाम है सैयद शहदा पे, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, उसके बाद फिर मैं मसाइब पे आ जाऊँगा क्योंकि वक्त नहीं रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, सब ने लिखा, मैं भी पिछले दिनों सुन रहा था, किसी ने पाकिस्तान में एतराज़ किया, कहा कि रसूल खुदा शहीद नहीं हुए। उन्होंने कहा जी हाँ, अल्लाह ने, ये हमारा अकीदा नहीं अलबत्ता मैं पेश कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर पेश किया गया, ये रसूल खुदा शहीद नहीं हुए। अल्लाह ने सारे अंबिया को जो कुछ दिया वो सब कुछ रसूल खुदा को अता किया, बल्कि जितना सारे अंबिया को मुजजात दिए थे उससे ज़्यादा पैगंबर इस्लाम को दी, लेकिन शहादत नहीं दी। शहादत दो तरह की होती है, सिर्री और आलनी, छुपी हुई शहादत और आश्कार शहादत। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, आश्कार शहादत तलवार से होती है। तो अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे दे दिए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, और वो जो दो शहादतें थीं ये सिर शहादतैन में भी लिखा है शाहवलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, लेकिन बहरहाल उसने नाम लेके नहीं पेश किया, अपने तौर पे अपने नाम से पेश किया उसने। तो अब कहा कि दो तरह की शहादतें हैं, सिर्री और अलनी। अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी, एक को सिर्री शहादत दी, दूसरे को अलनी शहादत दी। सिर्री शहादत इमाम हसन मुश्तबा की है, जहर से है, और अलनी शहादत तलवार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। तो अब उसने जो कंक्लूजन दिया मैं पेश करने के बाद, वो जो नतीजा वो पेश करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूं। वो ये कहता है, वो कहता है कि अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी,
اب ان دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے۔

कर सुन पाए। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा आपसे, अगर कोई किसी के बच्चे को तमाचा लगा दे, माँ बाप सामने खड़े हो, कैसी कैफियत हो जाती है? खुसूसन अगर माँ बेवा हो, जब शाम गरीबा में बीबी को तमाचा लगा ना, तो जनाब रबाब ने बड़ी हसरत से जनाब जैनब को देखा। क्यों? कि बीबी मेरी बच्ची को बचा लो। जनाब जैनब ने कहा, रबाब अब मुझे मत देखना, मेरा अब्बास नहीं रहा। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, मैं तमाम कर रहा हूं, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा आपको। बस भाई सुन लीजिए बीबी की, मैं शहादत की 3 रिवायात हैं, तीनों नहीं पेश करूंगा। मैं यहां पर रोके एक जुमले को पेश करूं ना, अब से तकरीबन 100 बरस पहले सैयद मोहसिन अल अमीन अल आमिली ने आयान शिया में लिखा, सैयद इब्राहिम दमिश्की बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनकी 3 या सिर्फ 4 बेटियां ही बेटियां थी, 68 बरस के थे, 70 से 2 कम। उनकी बड़ी बेटी ने कहा, बाबा मैंने रात ख्वाब में देखा है बीबी सकीना आई है, कहती मेरी कब्र में पानी आ गया, अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र से पानी निकाल दें। तो फौरन सैयद इब्राहिम दमिश्की ने कहा, बेटी खबरदार अपनी बहनों को ख्वाब ना सुनाना, अंबिया की आइम्मा की कब्रों को खोदना हराम है, उनके बच्चों की भी कब्रों को खोदना हराम है, बेटी अपनी बहनों को ख्वाब ना सुनाना, किसी को ख्वाब ना सुनाना। दूसरे दिन दूसरी बेटी ने कहा, बाबा मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है, एक छोटी सी बच्ची है, वो मेरे ख्वाब में कह रही थी अपने बाबा से कहूँ मेरी कब्र में पानी आ गया, मेरी कब्र को तामीर की जरूरत है। कहा, बेटी अपना ख्वाब किसी को मत सुनाना। तीसरे दिन तीसरी बेटी ने ख्वाब में देखा, यहां तक कि खुद सैयद इब्राहिम दमिश्की कहते हैं, मैंने खुद ख्वाब में देखा, एक बच्ची ने कहा, कहा सैयद मैंने तेरी बेटियों के जरिए पैगाम भिजवाया था, तूने उनकी बात को नहीं माना, मेरी कब्र की तामीर करवा दे। अब सैयद इब्राहिम दमिश्की बहुत बड़े आलिम दीन थे, सारे दमिश्क के उलमा को जमा किया, कहा कि इस तरह से मैंने ख्वाब देखा, क्या फिर आप तामीर करवाएं? मजदूरों को जमा किया, कहा कि सिर्फ कब्र को खोदना, एक मतलब एक मजदूर ने कहा मुझे कफन महसूस हो रहा, कहा सब दूर चले जाओ ये सैयदजादी है। मैं जिस जुमले को पेश करना चाह रहा हूं, मैं सारे मसायब नहीं पढ़ूंगा। सैयद इब्राहिम दमिश्की कहते हैं कि वो जो रिवायत है ना कि यजीद ने गसाला को भेजा था, कफन का कपड़ा भेजा था, क्या उस रिवायत को आइंदा ना पढ़ना। मैं कह गया, क्या वो जो अहले सुन्नत की रिवायत है ना कि यजीद ने कहा गसाला को भेज दो, कफन भेज दो, हुसैन की बच्ची को गुसल दे दे, कफन दे दे, क्या उस रिवायत को ना पढ़ना। क्या मैंने कुर्ते में लाशा देखा है, क्या मैंने कुर्ते में देखा, क्या कानों में जख्म थे, का हाथों में निशान थे रस्सियों के। अब बहुत से लोग उठ के चले गए, मुझे परवाह नहीं है, मैं 2 जुमले पेश करूंगा, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जुमले पेश करूं। आयतुल्ला इश्तिहारी ने जो जुमले लिखे हैं, का एक मर्तबा शाम के जिंदान में बहुत तारीकी थी, रात को जनाबे सकीना ने ख्वाब देखा, ख्वाब में अपने बाबा हुसैन को देखा, एक रो के जुमला का बाबा अब मुझे छोड़ के मत जाना, बाबा शिमर ने मुझे बड़े तमाचे मारे, बाबा मैं मुसलसल चचा अब्बास को पुकारती रही, मैंने बहुत कहा अम्मू मेरी मदद को, बाबा अब मुझे साथ ले जाओ, मैं जीना नहीं चाहती। इतने में बीबी की आंख खुल गई, फौरन आवाज दी, कहा अम्मा मेरे बाबा भी यहीं खड़े थे, कहा है मेरे बाबा मुझे लेने आए थे। सोगनावाले मोहम्मद में आयतुल्ला इश्तिहारी कहते हैं सारी बीबियां रोने लगी, जब बीबी ने अपना ख्वाब सुनाया ना, सब बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। कहा एक मरतबा यजीद ने आवाज सुनी, उठ गया, कहा क्या बात है, ये क्यों रो रही है, मुझे आराम क्यों नहीं करने दे रहे? कहा एक बच्ची है बार बार कहती मुझे अपने बाबा के पास जाना। कहा कौन है उसका बाप? कहा वो हुसैन की बेटी है। कहा जाओ हुसैन का सर दे दो। एक तश्त में सरे सैयद शहदा को रखा, उस पे कपड़ा डाला, जब तश्त लाए साथ में एक मशल थी, एक चराग था, बीबी ने एक मर्तबा मशल को एक मर्तबा उस तश्त को आते देखा, बीबी ने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यास नहीं, भूख नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना। उसने तश्त से कपड़ा हटाया, बीबी ने बाबा के सर को देखा, कहा बाबा जब खैर

सकीना मैं छोड़ के तन्हा नहीं जा रही, मैंने हुसैन से वादा किया था ना, मैंने हुसैन से वादा किया था मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगी सकीना को। अब समझ में आया बीबी दमिश्क वापस क्यों चले गए थी? बीबी वादा जो करके आई थी, कहा था भैया इमाम हुसैन जब जा रहे थे ना आखिरी सफर में, जब करबला में आखिरी जंग के लिए जा रहे थे, आखिरी हमले के लिए, असर के वक्त कहा था जैनब मैंने सकीना को आपको सौंपा। तो बीबी ने कहा था सकीना मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। परवरदिगारा वास्ता उस बीबी का, उसकी अजमतों का वास्ता कि जनाबे सकीना बिनतुल हुसैन जिसे जनाबे सैयदा की चादर का टुकड़ा कफन में मिला, कि अगर बहिश्ती कफन भी पाती तो जनाबे सैयदा की चादर से तो बेहतर ना होता। परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता, जनाब सैयद शहदा से उनकी मोहब्बत का वास्ता। एक जुमला मैंने चंद बरस पहले पढ़ा, उससे पहले कभी नहीं देखा था, जब मौला ने आखिरी मरतबा असर के वक्त जनाब सकीना को सीने से लगाया ना, बहुत ज़ोर से प्यार किया, बीबी बहुत रो रही थी, तो उस वक्त एक जुमला कहा का बीबी मुझ पे सबसे ज़्यादा रोने का हक आपको है, क्योंकि मेरे बाद सबसे ज़्यादा जुल्म आप पे होगा। उस वक्त बीबी ने कहा कि बाबा आपने हमेशा कहा कि बेटों का भी हिस्सा होता है, बेटियों का भी हिस्सा होता है, बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? तो मौला ने थोड़ी खाके करबला उठा के बीबी के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में असीरी आई है, शाम की कैद आई है, यतीमी आई है। परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता, हमारी मस्तूरात के पर्दे की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, नजफ व करबला की, काजमैन की, बलद की, शाम के तमाम रौदों की, सामर्रा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा सिर्फ आखिर दुआ को पेश करूँगा, परवरदिगारा तुझे वास्ता है बीबी की अजमतों का, हमें सारी हमारी ज्यारात को दोबारा ज्यारत करना नसीब फरमा और हमारी तमाम ज्यारात को आज़ाद फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।

जुमला बता नहीं सकते, है नहीं तो बताएंगे क्या? जिंदगी कैसे गुजरी, क्या हासिल हुआ, जिंदगी का नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। एक ड्रॉप नहीं निकलेगा, एक कतरा उनकी जिंदगी से नहीं मिलेगा। तो यह है बेबरकत जिंदगी, जानवरों की जिंदगी, हैवानी जिंदगी, बहुत मुख्तसर है। बस इतना समझिएगा कि जिस तरह से दो सजदों के दरमियान फासला है, दो सजदों के दरमियान एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से पूछा, मौला नमाज की एक रकात में क़ियाम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों हैं? हर नमाज की रकात में क़ियाम एक ही है, रुकू एक ही है, सजदे दो क्यों हैं? इमाम ने फरमाया, दो सजदे इसलिए हैं कि पहला सजदा इसलिए है कि ताकि इंसान को पता चले कि इसी मिट्टी से है, दूसरा सजदा इसलिए है ताकि लोगों को पता चले कि फिर इसी मिट्टी की तरफ जाना है, और जो दो सजदों के दरमियान फासला है इसी का नाम जिंदगी है। कोई जल्दी अस्तगफिरुल्लाह कह के चला जाता है, कोई बड़े इत्मीनान से अस्तगफिरुल्लाह कह के दूसरे सजदे में जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अपनी ज़िंदगी में टोटली कंफ्यूज हैं। दो लफ्ज़ हैं, इसको अच्छी तरह से समझिएगा तब आपको जाके कहीं ज़िंदगी समझ में आएगी। एक है मैं और एक है मेरा। ये दो लफ्ज़ अगर समझ में आ गए तो पूरी ज़िंदगी समझ में आ जाएगी। मैं और मेरा, हमारी मुश्किल ये कि हमने मेरे को मैं समझ लिया है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये कब पता चलेगा कि ये दो अलग अलग हैं? जब आपके पास मलकुल मौत आएंगे। ये जिस्म मेरा है, मैं नहीं हूँ, ये हाथ मेरे हैं, मैं नहीं हूँ, ये आँखें मेरी हैं, मैं नहीं हूँ, ये माल मेरा है, मैं नहीं हूँ, ये लिबास मेरा है, मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं हूँ, तो पता चला मैं और हूँ, मेरा और है। जब मलकुल मौत आएंगे, जब मौत का फरिश्ता आएगा, तब पता चलेगा, जब रूह निकाली जाएगी तो पता चलेगा कि जिसको मैं अपना समझ रहा था वो रह गया और मैं साथ चला। मैं और मेरे में जुदाई का नाम है मौत। जिसको आप मेरा समझ रहे हैं ये सब यहीं रह जाएगा, जब आने वाला आएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब कुछ ही रह जाएगा। अब मेरे और मैं में जुदाई हो जाएगी। ये दो इंसान के पास हैं, जिस्म और रूह, बॉडी और सोल। ये जिस्म जिसको मैं अपना समझ रहा था, मेरा समझ रहा था, इसी मिट्टी में, इसी खाक में मिल के रह जाएगा। मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल के रह जाएगा, बचेगा कुछ नहीं है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया है, फिर इसी मिट्टी की तरफ लौटाएंगे, फिर दोबारा फिर इसी मिट्टी से निकालेंगे। तीन तीन नस्बतें हमारी इस मिट्टी से हैं। अब फिर भी तू मिट्टी के ऊपर चलता है तो अकड़ कर कैसे चलता है? ला तमशे फिल अर्दे मरहा, खबरदार जब जमीन पर चलना तो अकड़ कर ना चलना, पैर मारते हुए ना चलना। जो भी अकड़ कर चलेगा वही जमीन चलने वाले पर लानत करेगी। मेरी ही खमीर से पैदा किया गया और मेरे ही ऊपर अकड़ कर चल रहा है, और अकड़ता वो है जो अपनी हैसियत को भूल जाता है। तो ये दो चीजें हैं, जिस्म और रूह में, पूरी तरह से सुनिएगा अच्छी तरह से, जिस्म और रूह में इत्तेसाल का नाम है मिलाप, का नाम है जिंदगी, जुदाई का नाम है मौत। बहुत आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूं। अब ये रूह है क्या? ये जो सोल है हमारे अंदर, ये रूह है क्या जो हमारे पूरे जिस्म को, बॉडी को कंट्रोल कर रही है? ये बहुत समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रूह है लेकिन रूह नहीं मालूम रूह है क्या। लोग आते थे रसूलुल्लाह से पूछते थे, यसअलूना

सूरह मरियम आयत नंबर 15, तीन यौम का तस्करा है तैयब व ताहिर जिंदगी के लिए। सलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतो व यौमा युबअसो हय्या, ये तीन यौम अच्छी तरह से समझिएगा तब आप कहीं अपनी जिंदगी को पाको पाकिजा बना सकते हैं। ये तीन दिन बहुत कठिन है, कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इन्हीं तीन दिनों में है। सलामुन अलैहि, देखिए लफ्ज़ यौम कुरान मजीद में ये भी सुनते जाइएगा 365 टाइम्स है, जितने साल में दिन हैं, साल में जितने दिन हैं, जितने डेज हैं, उतने ही मरतबा कुरान में लफ्ज़ यौम डे दिन आया है। और लफ्ज़ शहर, शहर के माने महीना मंथ, वो 12 मरतबा कुरान मजीद में आया है, जितने साल के 12 महीने हैं। ये कुरान का एजाज़ अददी, ये मुसलसल मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके बारे में। तो ये तीन लफ्ज़ यौम समझिएगा, सलाम हो उस दिन पर कि जिस दिन पैदा हुए, सलाम हो उस दिन पर कि जिस दिन इस दुनिया से गए मौत आई, और सलाम हो उस दिन पर कि जिस दिन दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ये तीन दिन इंसान के बहुत टर्निंग पॉइंट हैं, बहुत अहम है, निचोड़ है। पैदाइश सलामती के साथ, इंतकाल मौत सलामती के साथ, और क़यामत में दोबारा ज़िंदा होना सलामती के साथ, ये तुम्हारे ज़िंदगी के कामयाबी की दलील है। पाक घराने में पैदा हुए, पाक और साफ पैदा हुए, दुनिया से गए तो पाक, और जब दोबारा ज़िंदा किए गए तो पाक, ये तीन दिन बहुत ज़्यादा मुहिम है। यहीं इसी आयत को जो है उलमा ने, ये महफिल व मजलिस जो मनाते हैं आप, विलादत के वक्त महफिल करते हैं, जश्न मनाते हैं, और शहादत में मजलिस मनाते हैं, इसी आयत को जो है उन्होंने दलील के तौर पर, खुदावंद आलम उस बच्चे पर भी सलाम करता है जो इस सलामती के साथ दुनिया में पैदा हो, जिसकी ज़िंदगी तैयब व ताहिर हो, उस बच्चे पर भी सलाम, उस मौलूद पर भी सलाम, उस दिन पर भी सलाम जिस दिन पैदा हुआ। अरे बच्चे पर सलाम ये तो समझ में आता है, दिन पर सलाम क्यों? इसलिए कि वो दिन उससे मंसूब हो गया। ये 13 रजब क्यों अहमियत है? इसलिए कि 13 रजब मौला अमीर से मंसूब हो गई। तो पता चला कि मौलूद पर भी सलाम, उस दिन पर भी सलाम जिस दिन पैदा हुए। दिन भी काबिल एहतराम हो जाता है, कीमती हो जाता है जब मौलूद से मंसूब होता है। सलाम हो उस शहीद पर, मरने वाले पर जो राह खुदा में मरा, और सलाम उस दिन पर भी जिस दिन मरा, और सलाम हो उस दिन पर भी जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। अगर ये तीन दिन इंसान के कामयाब हो गए तो यकीन जानिए जिंदगी तैयब व ताहिर हो जाएगी। आगाज अंजाम, शुरू और इख्तिताम, इब्तिदा और इंतहा। इब्तिदा कैसी रही और इंतहा कैसी रही? देखिए जहां इब्तिदा दीन के साथ शुरू होती है, हदीस है हमारे पास, मैं बताता चलूं, ला हयात इल्ला बिद्दीन, दीन के बगैर जिंदगी नहीं। दीन के बगैर हैवानी जिंदगी तो हो सकती है, इंसानी जिंदगी नहीं हो सकती। और जो भी दीन से दूर हैं उनकी ज़िंदगी जानवरों की ज़िंदगी, हैवानों की ज़िंदगी, जंगल का नमूना हो सकती है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी नहीं हो सकती। दीन वो वाहिद ज़रिया है कि जिसके साए में आप पाक और साफ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इंसानी और ईमानी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब आए थे तो क्या हालत थी? कुछ साल मैं किसी एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, चंद साल पहले की बात है, कि जापान में एक सर्च हुआ, एक रिसर्च हुई चंद बच्चों पर जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा पैदा हुए थे, बच्चों के सिलसिले में रिसर्च हुई। 20-30 बच्चों को एक हॉल में रखा गया और बिल्कुल खामोश, उनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई गई, और एक हॉल में 20-30 बच्चों को रखा गया जो वहाँ पर हॉल में मौजूद थे, नए नए अभी ताज़ा पैदा हुए न्यू बर्न बेबी बच्चों को रखा गया, और उनको एक या डेढ़ मिनट तक हल्की सी म्यूज़िक सुनाई दी, उनको आवाज़ सुनाई दी गई। वो रिसर्च के बाद बताते हैं, कई सालों की तहकीक के बाद,
کہ جن بچوں نے آواز سنی

थी, म्यूजिक सुनी थी, वो बच्चे उन बच्चों की बनिस्बत जिन्होंने कुछ नहीं सुना था होशियार और चालाक निकले। जिन बच्चों ने आवाज सुनी थी इब्तिदा में डेढ़ दो मिनट तक पैदा होते ही, वो बच्चे बहुत होशियार और चालाक निकले। और वो बच्चे जिन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, जिनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई गई, थोड़ा सा ज़हनी एतबार से कम चालाक और होशियार निकले। ये क्यों? थोड़ी सी आवाज़ सुनाने के नतीजे में। अब पता चला कि इस्लाम ने 1400 साल पहले क्यों ये हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा हो तो दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत दो। एक या डेढ़ मिनट लगेगा आपको, खूबसूरत अजान हो, खूबसूरत लबो लहजा हो और बच्चे के कान में आज़ान और इकामत दी जाए, ताकि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो होशियार भी होगा, दीनदार भी होगा। इसलिए कि जो बच्चा इब्तिदा ही में अल्लाह का नाम सुन रहा है, रसूल का नाम सुन रहा है, इमाम का नाम सुन रहा है, तो यकीन जानिए उसकी ज़िंदगी भी उसी तरह से होगी, पाको पाकिज़ा तैयब व ताहिर ज़िंदगी होगी, जिसके बाद ज़र्रा बराबर आलूदगी, बुराई, परेशानी कोई ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। हमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह या उसका रसूल या इमाम तुम्हें बुलाएं तो गौर व फिक्र ना करो, सोचो नहीं, फौरन लब्बैक कहो। सूरह अनफाल की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए साहिबान ईमान, जब अल्लाह या उसका रसूल तुम्हें बुलाए, आवाज़ दे, तुम्हें दावत दे, तो फौरन लब्बैक कहो, गौर व फिक्र ना करो। इसलिए कि ये देखो कौन बुला रहा है, फौरन दौड़ पड़ो, लब्बैक कहो, अपनी आमदगी और तैयारी का इजहार करो। और जिन्होंने भी ज़र्रा बराबर भी गौर व फिक्र किया, सोचने की कोशिश की, वो नाकाम हो गए। अगर वो मौत के लिए भी बुला रहे हैं, मरने के लिए भी बुला रहे हैं, तो ये ना समझो कि इसमें मौत है, इसी मौत में तुम्हारी जिंदगी है। जंगे उहद में रसूल दावत देते रहे, बुलाते रहे, आओ मेरे सहाबी, आओ मेरे चाहने वाले, आओ, कोई आता नहीं था। यही तो फ़र्क है असहाबे हुसैन में और असहाबे रसूल में, जिस पर इमाम हुसैन ने फ़ख्र किया अपने असहाब पर। अपने असहाब पर क्यों फ़ख्र किया? जो मुझे असहाब मिले, मेरे नाना को नहीं मिले, मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भैया को नहीं मिले, मेरी माँ को नहीं मिले, क्यों फ़ख्र किया? फ़र्क को पहचानिए असहाबे हुसैन में और असहाबे रसूल में। रसूल अल्लाह जंगे उहद में अपने असहाब को बुला रहे थे, कोई आता नहीं था। रसूल का नवासा हुसैन इब्ने अली शबे आशूर अपने असहाब को भेज रहे हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। इतने बावफा, फिदाकार और जानिसार सहाबी। इसीलिए हुक्म दिया गया कि जब इमाम, रसूल या खुदा बुलाए तो गौर व फिक्र ना करो। जब इमाम हुसैन का काफिला करबला के सिमत में रवान था, एक शख्स से मुलाकात हुई, तुरमाह इबन अदी, तारीख में इनका नाम उठाकर देखिए, हातिम ताई, हातिम अदी, उनके रिश्तेदारों में से है ये शख्स, चाहने वाला था, मोमिन था। जब इमाम करबला के सिमत जा रहे थे तो इमाम ने उसे दावत दी, तुम भी हमारे कारवां में शामिल हो जाओ, तुम भी हमारे मकसद में शामिल हो जाओ। इमाम ये नहीं देखा कि कौन बुला रहा है, ये नहीं देखा कौन बुला रहा है, लब्बैक कहने के बजाय गौर व फिक्र करने लगा, कहने लगा कि बहाना बनाने लगा, बहाना भी यहाँ चलने वाला नहीं है। इसीलिए जब आखिरी इमाम आएंगे और तुम्हें आवाज़ देंगे, नुसरत की आवाज़ होगी, तो वहाँ फिर गौर व फिक्र का मौका नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ, दुकान बंद करके आता हूँ, घर लाक करके आता हूँ, पैसा मजबूत कहीं रख के आता हूँ, ऐसा नहीं। जब इमाम बुलाएं, ये ना देखो कि क्या हो रहा है, ये देखो कौन बुला रहा है। जिस हालत में भी हो दौड़ पड़ो, निकल जाओ इमाम की आवाज़ नुसरत पे लब्बैक कहते हुए। ये तुरमा इब्ने अदी को इमाम ने बुलाया, लेकिन ये कहने लगा कि मौला मैं आऊँगा, लेकिन मेरे साथ में कुछ नानो नफ़का है, अजूका है, घर वालों के लिए पहुंचा कर आऊँगा। देखिए क्या अहमियत है वो अजूके की, वो नानो नफ़े की, वो साजो सामान की। गया घर, घोड़ा लेकर, साजो सामान लेकर घर गया, और घर जाने के बाद सारा साजो सामान उतारा। ये हम सब के लिए मिसाल है, बेहतरीन नमूना है, याद रखिएगा कि जब इंसान किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाता है ना, वाबस्ता हो जाता है दिल

झुक जाता है। माल की आफत मालूम है आपको, माल को माल क्यों कहते हैं मालूम है? माल का डिफिनेशन क्या है, माल को माल क्यों कहते हैं? सुम्मियल मालु माला लअन्नहा तमीलुल कुलूब इलैहा। माल को माल इसलिए कहा जाता है कि जब माल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो एक आफत इसकी ये होती है कि इंसान का दिल उसकी तरफ झुकता चला जाता है, ऐसे झुक जाता है कि वो माल भी उसके मालिक के हाथ में नहीं होता बल्कि ये मालिक माल के हाथ में चला जाता है। अब हालत ये होती है कि जान पूछे तो दे दे लेकिन माल देने को तैयार नहीं होता, ये आफत बन जाती है वही माल। ये तुरमा इब्न आदी अपना साजो सामान आजूका लेके घर पहुंचा और वो सारा सामान रख के जब वापस लौटा करबला की तरफ, क्या देखा कि वाकई करबला तमाम हो चुका था। इमाम हुसैन और असहाबे हुसैन की शहादत वाकई हो चुकी थी। जिंदगी भर हाथ मलता रह गया, हसरत और यास में जिंदगी गुजरी। हाय मैंने क्या किया, इमाम वक्त ने आवाज दी नुसरत के लिए, बुलाया और मैं नहीं गया। जिंदगी भर पछताता रह गया और पछताने का कोई फायदा नहीं है। जब टाइम पास हो जाता है, वक्त निकल जाता है, तो वाकई करबला तो बार बार आने वाला नहीं है। अगर कम से कम नियत भी होती तो शामिल हो जाता, इसलिए कि इस्लाम वो वाहिद दिन है जहां नियतों पर भी जजा दी जाती है। आप आज नियत करके सो जाइए नमाज शब में उठना है, इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह सब नियत करके सोइएगा, नमाज शब में उठना है। अगर आप ना भी उठेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन नियत दो ना हो, जबान से कहें कि उठूंगा, दिल में है कि नहीं उठूंगा, इसलिए कि वो खुदा तो जानता है। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को धोखा दे नहीं सकते। वह मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुछ लोग वो हैं जो खुदा के सामने भी इस तरह की हरकतें करते हैं, समझते हैं कि जिस तरह से मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ खुदा को भी धोखा दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह ने उनको धोखे में डाल रखा है। वो लोगों को धोखा दे के कामयाब हो सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं दे सकते, इसलिए कि वो नीयतों से वाकिफ है। यहाँ पर नियतों पर जजा मिलती है। एक शख्स जंगे जमल में आया, मौला अमीर इमाम अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की खिदमत में, कहता है मौला मेरा एक भाई है मदीने में, वो इस जंग में आ नहीं सका, उसकी नियत थी यहाँ आने की लेकिन वो किसी काम की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से, या बाज़ तारीख में ये बात भी है कि माँ बाप की खिदमत की वजह से वो जा नहीं सका। इमाम ने पूछा कि वो क्या सच्चे दिल से आने की तमन्ना रखता था, क्या उसका इरादा सच्चा था? तो उसने कहा हाँ मौला, वो सच्चे इरादे में गुजर रहा है, उसकी नीयत सच्ची है, उसकी तमन्ना सच्ची है। तो इमाम ने फौरन कहा वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, फैसला इमाम ने सुनाया, वो भी मेरे साथ है और वो आने वाली नस्लें जो बाप के सुलबों में हैं और वो बच्चे जो माओं के शिकम में हैं, जिन जिन की नीयत ये है कि अगर हम जंगे जमल में होते तो अली के हम रिकाब होते, इमाम अली के साथ होते, वो सब नस्लें हमारे साथ हैं। करबला कोई लंबा सफ़र का नाम नहीं है, एक नियत का नाम है। जो आप ज़ियारत सायरे शहदा में पढ़ते हैं ना, पढ़ते तो हैं गौर नहीं करते, पढ़िएगा गौर से पढ़िएगा, जब आप गौर नहीं करेंगे तो फ़ायदा भी उतना नहीं मिलेगा। एक एक लफ्ज़ पे रुक रुक के, कुरान मजीद के लिए भी ये हुक्म है कि वरतिलिल कुरआना तरतीला, ज़्यादा पढ़ना सवाब नहीं है, कम पढ़ो गौर व फिक्र के साथ पढ़ो, सोच सोच के पढ़ो। कुरान मजीद में आयतुल्लाह अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि 300 से ज़्यादा मकामात में खुदावंद आलम ने इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी है, अमल से ज़्यादा, अमल की दावत कम दी है। नमाज पढ़ने के लिए 100 टाइम से ज़्यादा है, अकीमुस्सला तकरीबन जो है 100 मरतबा होगा, लेकिन गौर व फिक्र करने की 300 से ज़्यादा मकामात में दावत दी है। क्यों? इसलिए कि अमल में हो सकता है इंसान बदले या ना बदले, एक घंटा गौर व फिक्र के नतीजे में इंसान बदल जाता है, और अमल का नतीजा नहीं एक घंटा गौर व फिक्र का नतीजा है, जो क़यामत तक के लिए अलैहिस्सलाम बन गया। हुर का अमल क्या था?

वो कहाँ इमाम के साथ था? इमाम के दुश्मनों के साथ था, दुश्मनों के लश्कर में था। किसने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया? अमल ने नहीं, नमाजों ने नहीं, रोजों ने नहीं, एक घंटा हुर की फिक्र ने हुर को हमेशा के लिए अलैहिस्सलाम बना दिया और इमाम के असहाब में वो शामिल हो गया। देखिए, एक घंटा गौर व फिक्र, जब आप अपना सर तकिए में रखते हैं तो गौर व फिक्र कीजिएगा, दिन भर का हिसाब करें, गौर व फिक्र करें। ये नमाज़ें आपको नहीं बदलती, ये रोज़े आपको नहीं बदलते, ये आमाल आपको नहीं बदलते, ये दुआएं आपको नहीं बदलती, जब तक कि इंसान गौर व फिक्र का सहारा ना ले। यही तो कहा जाता है ना, जनाब अबू ज़र कैसे अबू ज़र बने? ईमान के किस मंजिल पर हैं? नौवें दर्जे पर, दसवें दर्जे पर जनाब सलमान। ये ईमान के दर्जे हैं, इसका भी खुद एक मुस्तकिल टॉपिक है। ये दर्जे किस एतबार से हैं? पहला दर्जा, दूसरा दर्जा। देखिए, ऊपर वाला नीचे वाले को समझता है, लेकिन ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले, LKG UKG वाले, नर्सरी वाले जो है वो PhD वाले को क्या समझेंगे? PhD वाला जो है ये छोटे बच्चों को समझ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आलिम जाहिल को समझता है लेकिन जाहिल आलिम को नहीं समझता, इसलिए कि वहाँ पहुँचा ही नहीं तो समझेगा क्या? जो एक मामूली आलिम को नहीं समझता वो मर्जे तकलीद को क्या समझेगा? जो लोग बड़े बड़े अपने साथ बैठकर फैसला कर रहे हैं मर्जे तकलीद के बारे में, ये फतवा क्यों ऐसा दिया, ऐसा फतवा क्यों दिया? आपको क्या मालूम है फतवा दिया कैसे जाता है? आपको अक्ल कहाँ है? आपको शऊर कहाँ है? आप उस मंजिल पर पहुँचे कहाँ हैं? जब उस मंजिल पर पहुंचे नहीं आ तो आपको एतराज़ करने का हक क्या है? पहले अपनी जिम्मेदारी समझो ताकि मर्जे तकलीद की जिम्मेदारी समझ में आए। तुम्हारा काम ये कहना नहीं है कि ये क्यों फतवा दिया, तुम्हारा काम सिर्फ अमल करना है, सिर्फ अमल करना है। देखिए, चार तकलीद हैं, तीन बातिल हैं, एक सही है। चार तरह की तकलीद है, तीन बातिल हैं, एक सही है। जाहिल जाहिल की तकलीद करे, बातिल, गलत, रॉन्ग। एक जाहिल, दूसरे जाहिल। ऐसा होता है कि जैसे आप अगर रास्ता पार कर रहे हैं, आप नाबीना हैं, आप अपना हाथ एक नाबीना के हाथ में दें, वो अंधा आपको क्या रास्ता दिखाएगा? जो खुद देख नहीं पाएगा वो दूसरों को क्या रास्ता दिखा सकता है? तो जाहिल जाहिल की तकलीद करे ये ममनू है, गलत है। आलिम आलिम की तकलीद, यह भी गलत है। इसलिए कि जब खुद वो आलिम है, मसाइल को समझता है, कुरान को समझता है, हदीस को समझता है, आयात को समझता है, तो उसे तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो एक मुश्तहिद होता है ना, वो मुश्तहिद दूसरे मुश्तहिद की तकलीद नहीं करता, उसके लिए हक नहीं है। जब खुद वो साहिब इज्तिहाद है, वो मुज्तहिद है, तो वो खुद अपने इज्तिहाद पर ही अमल करेगा, वो किसी दूसरे मुश्तहिद की तकलीद नहीं करेगा। ये दो बातिल, आलिम जाहिल की, ये तो और मामला ख़राब है। आलिम जाहिल की तकलीद, ये भी गलत है। एक आलिम जाहिल की तकलीद क्या करेगा? जाहिल के पास है ही क्या? जाहिल तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, तो तकलीद के काबिल क्या होगा? एक ही तकलीद है जो सही है, जाहिल आलिम की। जाहिल आलिम की तकलीद करेगा, यही सही है बस। और जितने हैं दुनिया में, ये हमारी मजबूरी है, ये भी अच्छी तरह से बात लेकर जाइएगा, ये जो तकलीद का हुक्म दिया गया ये हमारी मजबूरी है। जो काम हमें करना चाहिए था, मर्जे तकलीद का एहसान हम पर कि उसने अंजाम दे दिया। हमें समझना चाहिए था नमाज क्या है, नमाज का तरीका क्या है। पूरे कुरान में ढूंढ डालिए नमाज का तरीका, आप कहाँ से निकालेंगे? ये मगरिब की 3 रकात, ये ईशा की 4 रकात, ये नमाज का तरीका क्या है, अहकाम नमाज क्या है, शरीयत क्या है, रोज़े के अहकाम क्या हैं, मुब्तलात रोज़ा क्या है, ये सारे अहकाम आप कहाँ से समझ पाएंगे? कुरान पढ़ना तो ढंग से आता नहीं है, कुरान समझते तो नहीं है, चले हैं मुज्तहिद का काम करने के लिए और कह रहे हैं कि तकलीद की क्या ज़रूरत है, खुद मुज्तहिद बन जाओ, तकलीद की ज़रूरत क्या होगी? खुद तुम इतने काबिल बन जाओ कि कुरान समझ सको, अहादीस समझ सको, रिवायत को समझ सको, तब कहीं जाकर तुम फतवा निकाल सकते हो। तो एक ही तकलीद का मसला जो है वो सही है, वो जाहिल जो है आलिम की करेगा। अब दुनिया में जितने हैं सब जाहिल हैं, फ़िक्र के सिलसिले में, अहकाम इलाहिया के सिलसिले में, अहकाम दीन के सिलसिले में जाहिल है, तो हम सब जाहिल हैं, नहीं जानते, उस मंजिल पर नहीं है। जो पहुँच चुका है, अभी कितना बदबخت है इंसान, रोज़ाना उठते बैठते किस किस की तकलीद कर रहा है, घर का

प्लान बनाना है तो तकलीफ याद आती है, खुद नहीं बनाता इंजीनियर के पास जाता है, बच्चा बीमार है भागता भागता डॉक्टर के पास जाता है, खुद इलाज नहीं करता, जिंदगी भर अगर ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइवर का सहारा लेता है, जिंदगी भर दूसरों की तकलीफ कर रहा है, लेकिन जहां दीन का मसला आया कहता है कि तकलीफ की जरूरत नहीं है। ये इंसानों के लिए शैतानी हरबे हैं। देखिए याद रखिएगा, शैतान जो है वो काफिरों को नहीं बहकाता है, मुशरिकों को नहीं बहकाता, बुरे लोगों को नहीं बहकाता। एक शख्स ने छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से पूछ लिया, आखिर क्या बात है कि ये शैतान मोमिनों के पीछे लगा हुआ है, दूसरों को बहकाता नहीं, दूसरों को गुमराही नहीं करता, दूसरों को वसवसे नहीं डालता। इमाम ने बहुत खूबसूरत अच्छी तरह से मिसाल दे के समझाया कि देखो, चोर जो डाका डालता है खाली मकान में जाता है या भरे मकान में जाता है? वो गरीबों के पास जाएगा क्या, है ही क्या, मौलियों के पास और भी नहीं आता सिवाय किताबों के, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो शैतान वहां जाता है जहां माल होता है। माल कहाँ है? मोमिनों के पास है। और सबसे कीमती चीज है ईमान। और याद रखिएगा, सिर्फ माल ही चोरी नहीं होता, हम माल बचा बचा के बड़ी हिफाजत से जेब में रखते चलते हैं, बड़ी हिफाजत से चलते हैं, सिर्फ माल चोरी नहीं होता, हर कीमती चीज चोरी होती है, सोना जवाहरात हर कीमती चीज चोरी होती है। अब जरा इंसाफ से बताओ कि ईमान कीमती चीज है या नहीं है? जब कीमती है तो इसकी हिफाजत जरूरी है। कभी ऐसे होता है कि घर में तो मोमिन है लेकिन जब घर से बाहर निकले थे, नामहरम पर निगाह पड़ी, ईमान की चोरी होती रही, धोखा दिया, झूठ कहा, एक एक गुनाह होता रहा, ईमान चोरी होता रहा। जब वापस घर लौटे पता चला इंसान आया है, ईमान खो के आया है। इसलिए आयतुल्लाहिल उज़्मा मरशी नजफ़ी के सिलसिले में बताया जाता है कि जब वो घर से बाहर निकलते थे तो 14 मासूमीन को गवाह करार देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगते, परवरदिगार मैं घर से निकल रहा हूँ ईमान लेकर, खुदा तुझसे ये दुआ है कि जब मैं घर लौटूँ तो ईमान के साथ लौटूँ। ये खतरा रहता है, हमेशा इंसान को खतरा लगा रहता है, इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसी ईमान और इस्लाम और दीन की हिफाजत के लिए अहले बैत ने अपनी जान को कुर्बान किया है। क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं? इन कान दीन मुहम्मद लम यस्तकीम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुदीनी। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर दीन मुहम्मद मेरे कत्ल के बग़ैर पाबरजा नहीं हो सकता, आओ तलवारों ये गला हाजिर है। सब कुछ कुर्बान कर दिया। चौथे इमाम इमाम सज्जाद ज़िंदगी भर करबला की मुसीबतों को याद करके रोते रहे। जब चाहने वाले आपसे कहते कि मौला शहादत तो आपकी मीरास है, आप इतना क्यों रो रहे हैं, तो इमाम फौरन यही कहते कि ये शख्स तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है, क्या खैमों का जलाया जाना ये भी हमारी मीरास है? क्या माँ बहनों का बेमकनो चादर बाजारों में फिराया जाना ये भी हमारी मीरास है? 35 बरस मौला सज्जाद गिरिया करते रहे हैं। इमाम से कहा कि आप इतना क्यों रोते हैं, तो इमाम यही कहते कि जब मैं आंख बंद करता हूं सोने के लिए तो करबला का मंजर मेरी नज़रों में आ जाता है, कभी बाबा का कटा हुआ सर निगाहों में आ जाता है, कभी भैया अली अकबर का कलेजा निगाहों में आ जाता है, कभी चचा अब्बास के कटे हुए शाने आ जाते हैं, कभी कासिम के पामाल शुदा टुकड़े निगाहों में आ जाते हैं। हाय मैं न रहूं, एक यूसुफ याकूब से जुदा हुआ था, याकूब इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, हाय मेरे 18 यूसुफ एक दोपहर में खाको खूं में गलदीदा हो गए। 35 बरस चाहने वाला कूफे से आता है, इमाम की खिदमत में अर्ज करता है, मौला आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्तार ने आपके भाई अली अकबर के कातिल को पकड़ लिया। मौला खामोश हैं। फिर वो रावी कहता है कि मौला मैं आ रहा था, अब्बास के कातिल को गिरफ़्तार कर लिया गया।

0: बिल्कुल हकीकत है। मेरी मुख्तार से बहुत पुरानी दोस्ती थी। शाहिद हूं कि खलीफा ने कूफे की अमीरी का हुक्म उसे दिया, मगर उसने कबूल न किया। मैं वहीं पर मुख्तार के मकासद को पहचान गया और उससे दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। बहरहाल मर्जी है आप लोगों की। अगर आप लोग इस हुकूमत के साए से नहीं डरते जो मुख्तार बनाना चाहता है, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मक्के की तरफ चला जाता हूँ। और अगर ऐसी किसी हुकूमत को नहीं लाना चाहते तो मेरे हाथ में हाथ डालिए और घर घर की जंग से मत घबराइए और अपने तमाम तलवारबाजों के साथ मैदान में उतर आइए ताकि मुख्तार और उसके साथियों को मिलकर खत्म कर दें। क्यों हंस रहे हो पिसरे साथ?
1: माफी चाहता हूँ, बहस में मिठास पैदा करने के लिए, इन हजरात की घबराहट को खत्म करने के लिए जिनकी काफी तकरीरें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सुनिए, एक दिन लोमड़ी ने एक ऊंट को सोए हुए देखा। उसने चाहा कि ऊंट से मजाक करे, अपनी दुम को ऊंट के दुम से बांध दिया। ऊंट उठा और लोमड़ी हवा में मौन लग रह गई। एक ऋण ने हमको देखा, उसने लोमड़ी से पूछा ये सब क्या है। लोमड़ी ने चिल्लाकर फरियाद और गिरिया किया और कहने लगी ये उसकी हालत है जो बड़ों से निस्बत जोड़े। ये वाकया हम जैसे लोगों के लिए मिसाल है जो लोमड़ी है और अपनी दुमों को आप जैसे बड़ों की दुमों से बांधा हुआ है।
2: उमर, बदतमीजी मत करो।
1: कौन सी बदतमीजी शेवर, हम दोनों की यहाँ कोई औकात नहीं है। हमारा इस मुशावरत में काम ही क्या है? तुम्हें याद नहीं, पिछले हाकिम जैसे ही कूफे में आते थे, अपना रोब जमाने के लिए सबसे पहले हमारे मुंह पे थूकते थे, हमारे पीछे एक लात मारते थे।
0: अच्छे और बुरे को एक सा ना कहो पिसरे साथ। मेरा मामला दूसरों से जुदा था और है।
1: अच्छा और बुरा एक सा हो गया है। अमीर कूफे को एक ऐसा अमीर चाहिए जो कूफे को पहचानता हो। एक दिन ऐसा ना गुजरा कि मैंने कूफे के पिछले अमीरों को मुख्तार के खतरे से आगाह ना किया हो। उनमें से किसी ने ना सुनी, उनमें से कौन समझा। अब जबकि मुख्तार एक साथ सरों वाला अजदहा बन चुका है तो उसके सर को पत्थर मारना चाहते हैं आप। अगर ये सब लोग आपके हाथों में हाथ डालकर चले फिर भी मुख्तार के एक सर को कुचल सकते हैं, उसके बाकी छह सरों का क्या करेंगे? और क्या मालूम कि आप भी उस अजदहा के सरों में से एक सर हो जो मुख्तार के साथ मिल गए हो और हमें अजदहे के मुंह में धकेल रहे हो। आप मुख्तार के दोस्त थे या नहीं थे? आप मुख्तार और खलीफा के दरमियान वसीला थे या नहीं थे? आप
0: बहुत हो गया पिसरे साथ, बहुत हो गया। मैं खलीफा को लिख देता हूँ कि पिसरे साथ सबसे समझदार है और कूफे को पहचानता है और कूफे की अमीरी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। मुझे हटा दीजिए और इसे बिठा दीजिए। तुम ये बातें किस लिए कर रहे हो? तुम समझते हो मुख्तार मेरे अमीर कूफा होने की वजह से कयाम करना चाहता है? कूफे को तुम लोगों ने ये दिन दिखाया है। मुख्तार के खौफ से पागल हुआ जा रहा है और मुझ पर मिल जाने की तोहमत लगा रहा है।
1: अफसोस है नादानी पर, खुदा की पनाह ना फहमी से, खुदा की पनाह जहालत और बेवकूफी से। अफसोस, अफसोस, अफसोस।
2: आप सब जानते हैं कि उमर आजकल वहम और माले खोलिया में मुब्तिला हो गया है, अपने साए से भी डरता है। फिर उसे इस महफिल में क्यों बुलाया?
0: अगर उसे न बुलाते तो फिर खलीफा को कोई खत लिख देता और हमारी तारीफ करता। तुम क्या समझते हो बिन यजीद की खबरें खलीफा के लिए कौन लिखता था?
3: अगर इजाजत हो तो बातें करना चाहता हूँ।
0: बोलो शबस, बोलो। हमने आप लोगों को बुलाया इसलिए है कि बैठ कर दिमाग लड़ाए और हल निकालें। मुझे नहीं मालूम उमर साहब ने हिमाकत क्यों की, मैंने तो अब तक उसकी कोई तोहीन नहीं की।
3: इंसान सरापा खता का पुतला है, हम सब हजरत आदम की नस्ल से हैं, गलतियां करते हैं, बुराइयां करते हैं। उमर भी इस आफत से बचा हुआ नहीं है, उसे थोड़ा सा हक दीजिए। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं, दिन रात लोगों के ताने दुश्ने सुनता है। उमर एक दिलेर इंसान है, एक गयूर कबीले से ताल्लुक रखता है, उसका होना मानी खेज है। ये मसलहत के खिलाफ है कि इन हसास और बोरानी हालात में हम उसे गंवा दें।

0: तो कोई एतराज नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो उसे हरगिज ना बुलाते। वही है जो हमारे खिलाफ हो गया है।
1: हर इंसान के एक अना होती है, उसका मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ कि उसे वापस ले आऊंगा।
0: आप हमारी जानिब से वकील हो गए। मुख्तार का मसाला बड़ा है, मगर इतना नहीं कि उमर साद उससे बिल्कुल ही मायूस हो गया है। अगर सब मैदान में उतर आए और आपस में हर बंदा कूफे के एक मोहल्ले की नाकाबंदी कर दे और किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना दे, तो यकीन रखिए कि अय्याज और उसके सिपाही इस पर कुदरत रखते हैं कि मुख्तार और उसके एक एक साथी को शिकार कर ले। शियों के सरदार को पीट दो, बकिया लोग खुद सीधे हो जाएंगे।
1: उमर, शैतान के बहकावे में मत आओ, हमें अकेला मत छोड़ो। खुदा की कसम, अगर मुख्तार जीत गया तो बकौल तुम्हारे वो ऐसा सात मुंह वाला हस्ता है जिसकी खुराक मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं।
2: आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मुख्तार के साथ क्या करना है। किसी को मेरी जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं।
1: तुमने कोई तरकीब सोची है तो बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
2: मैंने देख लिया कि तुम और शिव किस तरह उसके दरवाजे पर जबान लटकाए खड़े थे, जिसे मैं अपने घर का दरबान बनाने के काबिल भी नहीं समझता। आप लोग अपने उसी महबूब और मकबूल वाली के साथ रहिए, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है।
1: तुम तो अकलमंदों में से हो उमर, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती।
2: आली सुबैर और उसके कारिंदे लादीन बेगैरत और मुनाफिक हैं। उन्होंने मशवरे की महफिल में किसी खैर ख्वाही के इरादे से नहीं बुलाया। तुम्हारे मोहताज हैं ये लोग बेवकूफो, ये लकीर और ये निश। अगर इनका गधा पुल से गुजर जाने के बाद तुम लोगों को किसी जख्म साफ किए हुए कपड़े की तरह दूर न फेंक दिया, तो उमर साद अपने बाप का बेटा नहीं।
1: वाकई तुम्हारी अकल घास चरने गई है, बकौल चिमर के कि तुम ज़हनी मरीज हो। हम सब जानते हैं कि आल जुबैर का कूफे वालों से मदद मांगना महज उनकी चालाकी है, मगर हम क्या करें? हम आल जुबैर की नौकरी करें, ये उससे कहीं बेहतर है कि अपनी गर्दन मुख्तार की नफरत की तेज तलवार के आगे झुका दें।
2: अंधा कभी भी दोबारा अपनी लाठी नहीं खोता। आप लोग जुबैरियों के हाथों का खिलौना बनना चाहते हैं तो बन जाइए। मेरे लिए मुख्तार के हाथों मर जाना इससे बेहतर है कि मैं इन चंद गधों की औलादों के हाथों का खिलौना बन जाऊं।
1: तुम मशकूक लग रहे हो उमर, मुख्तार का साथ देने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा?
2: अभी मैं इतना पागल भी नहीं हुआ। अगर सूरज के मगरिब से तुलू होने की खबर सुन लूं, तो फिर ये समझ लेना कि उमर इसाद और मुख्तार दोस्त बन गए, क्योंकि मेरी और मुख्तार की एक आदत बहुत मिलती जुलती है। हम दोनों का जब्त एक समंदर के जितना है। मैं हमेशा मुख्तार से दुश्मनी रखना ही पसंद करता था, हमेशा मैं ही जीता हूं। अगर तुम मुख्तार की तलवार से बच गए और जिंदा रह गए तो जरूर देखोगे कि मैं कैसे मुख्तार के खून का प्याला पीता हूं।
3: अबू नवाज, आग बहुत भड़क रही है, इसे कम करो ताकि ठीक से पक जाए।
4: जी अच्छा।
3: उम्मे शहाब
5: जी।
3: मामा
5: जी। अच्छा बानो,
6: आखिर ये लोग कब तक मुफ्ते का लंगर खाते रहेंगे?
7: क्या पता बहन, ये जो लाओ लश्कर नजर आ रहा है, जब तक सारा माल पानी खत्म नहीं कर देंगे जान छोड़ने वाला नहीं है।
8: बिलाखिर जुबैरियों ने भी अपनी खबासत दिखा ही दी। कूफे का नया अमीर आशूर के जालिमों के साथ मुत्तहिद हो गया है और क़याम का मुकाबला करने का इरादा रखता है।
9: मैं इस मुकाबले के लिए दिन गिन रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो उमर साथ जैसे काले धब्बे को कूफे के दामन से साफ कर दूंगा।
8: बशर्ते कि वो अपने मरून साथियों की तरह मैदान में उतर आए।
9: उमर साद जैसे खबीस का नामा अमाल पहले ही काफी हद तक काला है, उसका मैदान में आना लाजमी नहीं है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे।

0: हंगामी हमला करने वाला अपनी हर चीज से असलहा बना लेता है, यहां तक कि अपनी कमर की शाल से, सर की दस्तार से या गधे की लगाम से।
1: ए औरत, कहां जा रही हो?
2: तुम्हारे बाप के कातिल को शिकार करने जा रही हो।
1: मेरे बाप का कातिल? ऐसा कोई कातिल उसकी माँ ने नहीं जना।
2: तुम्हारे बाप का पागलपन तुम पर भी तारी हो गया है क्या? हटो सामने से।
1: हर जगह की नाकाबंदी कर दी गई है। बाबा के हुक्म के मुताबिक हमें नाकाबंदी नहीं तोड़नी।
2: अगर नाकाबंदी तोड़ दे तो क्या होगा?
1: कुछ नहीं होगा। बाबा को पसंद नहीं कि उनकी बीवी नाकाबंदी तोड़ दे और हाकिम कुफा का एहसान लेना पड़े। वक्त आने पर पूरी कौम और कबीले के साथ नाकाबंदी तोड़ देंगे।
2: हटो सामने से। सीना तान के मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है।
1: का दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारा खून बहा दूंगा बुढ़िया।
2: नहीं,
1: खोल के दिखाओ।
2: मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा बेटा है जो अपनी माँ पर तलवार उठाए हुए है। वाय हो मुझ पर, मेरा ऐसा नसीब था और मैं जानती न थी।
3: नाम में रखो मेरे बेटे, वो दुश्मन नहीं दोस्त है।
1: बाबा जान, आपने आज तक दोस्तों से कम चोट नहीं खाई है। बकौल आपके, सियासत माँ बाप को नहीं पहचानती। ये औरत अगर दोस्त होती तो नाकाबंदी ना तोड़ना चाहती।
3: देख रही हो जारिया, हूँ बहू मेरी जवानी की तरह हो गया है, गैरतमंद और होशियार।
2: ये बाप बेटे को क्या हो गया है? ये कौन सी हौलनाक हालत है? तुमने इस बच्चे के क्या कान भरे हैं? किसने तमाम दर रिश्तों का सरगलम कर दिया? बदबख्त जारिया, लाना थे तुम्हारे मनहूस सितारे पर औरत। इस देवनुमा बच्चे को मैंने जना है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। तुम अपनी माँ को मार डालना चाहते थे?
1: फिर रोना शुरू कर दिया इसने। बाबा, आखिर औरतें ऐसी क्यों होती हैं?
3: ऐसी हैं मेरे बेटे,
1: रोना जानती हैं, फरियाद करना जानती हैं, डंडोरा पीटना जानती हैं। पागल हो गई है बुढ़िया।
2: बदकार, मुझ पर तलवार क्यों चलाई?
1: पागल हो गई है क्या?
2: तुम्हारे बाप को आज दिखा दूंगी कि किसके खिलाफ खड़े हो तुम लोग। बहुत जोश आ गया है तुम में, बहुत जोश आ गया है। हाँ,
3: क्या कर रही हो जारिया?
2: उठाओ,
3: दीवानी हो गई हो।
2: मारो मुझे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं जितना खामोश रहती हूँ और दांत भींच के बैठ जाती हूँ, तुम और तुम्हारा पिल्ला उतना ही जोश मारते हो। अगर इसको ठीक नहीं किया तो मेरा नाम जारिया नहीं। बोलो मुझसे गलती हुई, बोलो मुझे माफ कर दे। बोलो मैंने अपनी अपने बाप की
1: गलती किया मैंने नहीं।
4: मुंह बंद करो हफस, मरना चाहते हो?

0: मुबारक हो, तुम्हारी बात ठीक निकली है अबू इसहाक। इंतकाम में हुसैन के झूठे दावेदार कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और आज से हर कबीला एक मोहल्ले की नाकाबंदी करेगा।
1: उमर साद की क्या खबर?
0: फिलहाल उमर साद वो वाहिद शकी है जो मैदान में नहीं आया। बज़ाहिर उसमें और उसके साथियों में दरार पड़ गई है। शबस को हुक्म मिला है कि उससे बात करें।
1: फौरन इब्राहिम को पैगाम दो कि वो जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचे आज रात।
0: जी अमीर।

0: मत जाओ अम्मा, कुफा हुकूमत ही कारण दोगी नाका बंदी में, सारे रास्ते बंद है, कत्ल कर देंगे तुम्हें।
1: मार दे, कम अज कम इससे तो बेहतर है कि हम खुद अपने आप को मार दें।
2: कहाँ जा रही हो?
1: मैं अपने भाई मुख्तार के घर जा रही हूँ।
2: किस लिए जा रही हो?
1: मैं अमाननामा लेने जा रही हूँ।
2: मुख्तार कौन सा जानवर है जो मुझे अमान देगा? वो गौर से सुनो जारिया, अगर तुम्हारे पांव मुख्तार के घर तक पहुँचे तो इस घर को भूल जाना, अगर वापस आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
1: तुम इस दोजख को घर कहते हो? तुम खुद जानते हो कि ये मुख्तार का दौर है। तुमने आले उमैया और आले जुबैर के लिए क्या कम तुम हिलाई है? तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम तो हर गधे घोड़े को लब्बैक कहने वाले थे, बस एक बार मुख्तार को भी लब्बैक कह दो।
2: मैं अपनी बात कह चुका हूँ, इतना मेरे सामने मुख्तार मुख्तार मत करो। तुम्हारा भाई मेरे लिए एक मच्छर से भी कमतर है, मुझे उसके अमान नामे की कोई जरूरत नहीं।
1: बहुत खूब, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अमान नामा ले लूंगी।
2: मत जाओ बुढ़िया, अपने आप को इतना हकीम मत करो। मुख्तार सालों से ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में है। मत जाओ। खुदा तुम्हें गारत करे मुख्तार।

0: रुक जाओ बहन, कहाँ जा रही हो?
1: अपने भाई के घर जा रही हूँ।
0: अकेली क्यों जा रही हैं? आपके साथ कोई मर्द क्यों नहीं?
1: शायद हमारे मर्द मर चुके हैं। आपसे क्या वास्ता कि लोगों के मामलात में दखलंदाजी करें?
0: ज्यादा बकवास मत करो बेवकूफ। कहीं ऐसा ना हो कि सिपाहियों की तौहीन के जुर्म में तुम्हें तमीज सिखाने के लिए भिजवा दूं।
1: मुझे तमीज सिखाओगे बदतमीज? अगर तुम्हें तमीज होती तो औरतों पर रास्ता बंद ना करते। मैं हूँ उमर बिन साद की बीवी, आइए मुझे तमीज सिखाइए।
0: आपको कजावेदार ऊंट पर बैठना चाहिए और गुलामों की दोष पर आमदरफ्त करनी चाहिए। इस तरह अकेले नहीं, अगर आप बता देती कि कौन है तो आपके नौकर रास्ता रोकने की गलती भी ना करते।
1: तुमने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ?
0: इजाजत दें तो कोई महाफी साथ भेज दूँ।
1: मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी जरूरत होगी कि मुख्तार के घर तक साथ चल सको।

0: समरा, ये काम तुम्हारे बस का है। सिर्फ तुम ही हो जो मुख्तार के सामने जा रही है की सिफारिश कर सकती हो।
1: नारिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो मुख्तार को जानती हो। हम सबको दुमा का दामन थामना होगा।
2: सिर्फ एक शर्त पर उमर को अमान दूंगा।
3: कैसी शर्त?
2: उमर को कसम खानी होगी कि वो और उसका कबीला मेरे खिलाफ खड़ा ना हो और मेरे दुश्मनों का साथ न दे, ना उमवियों का और ना जुबैरियों का।
3: खुदा की कसम मुख्तार, उमर का यही इरादा है। अगर यूं ना होता तो वो भी मैदान में उतर आता और किसी मोहल्ले की नाकाबंदी कर देता।
2: जिंदगी में अगर कोई ढंग का काम किया होगा तो वो यही होगा। कह दो कि अपने इसी फैसले पर कायम रहे।
3: खुदा तुम्हें मजीद इक्तदार से नवाजे मेरे भाई। अगर एक अमान नामा भी लिख दो तो उमर को कुछ ढारस हो जाएगी।
2: कौन सा अमान नामा, जबकि अभी बादी शुरू ही नहीं हुई। मेरी जबान ही अमान नामा है। अगर खुदा ने चाहा और मैं मैदान ले गया तो फिर अमान नामा भी लिख दूंगा।
0: इसका खुदा भी एक ही और जबान भी एक। यूं जिद मत करो जा रही हूं।
2: और आप भी पहले की तरह इस घर में आमदोरफ्त मत कीजिए।

0: Yo.
1: इब्राहिम है।
0: ये अस्तर की मक्खियों का रिला जब तक हुकूमत के फूल का रस चूस कर उस रस से चकाकी छत्ते पर शहद ना बना ले, जान छोड़ने वाला नहीं। आप लोगों ने आमदरफ ममनू होने का कानून नहीं सुना? भूलिए तो बता रहे हैं तुम लोग बागी हो। सबसे बड़ा गधा आगे आकर बताए कि कौन हो तुम लोग और किस कबीले से हो।
2: हम आदमजाद हैं, जानवरों की जबान नहीं जानते। क्या तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसा है जो इंसानों की जबान में बात करे, इंसानों की तरह पूछे और इंसानों की तरह जवाब सुन सके?
0: अगर तुम लोग इंसान होते तो अमीर कुफा और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कभी ना करते। तुम हमारे कैदी हो इब्राहिम।
2: किस जुर्म में?
0: किस जुर्म में? नंबर एक, नाकाबंदी तोड़ी है तुमने। नंबर दो, अपने हंगामा आराई करने वाले दोस्त के घर जा रहे हो। नंबर तीन, तुम्हारा नाम उन लोगों में है जो अमीर कूफा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
2: रास्ता खोल दो बेवकूफ।
0: और अगर ना खोलूं तो?
2: अबाकुत, इधर आओ।
3: ले जाऊं अमीर?
0: उसे समझाओ कि वो तस्लीम हो जाए, वरना मैं इन लोगों का खून बहा दूंगा।
3: जी अमीर। क्या हाल चाल है इब्राहिम?
2: ठीक ठाक अबाकुत, अपना नेजा दिखाओ। हम्म,
3: इब्राहिम, तुम्हारी और मुख्तार की कुछ गलत खबरें अमीर को मिली हैं। तमाम कबाइल मुसल्लाह हो गए हैं। कूफा कमोबेश 10,000 तलवारबाजों की नाकाबंदी में है। अमीर कूफा को अब तक उम्मीद है कि तुम मुख्तार की बैत तोड़कर अपने आप को मुख्तार के मार्ग से दूर कर लोगे।

0: ये जंग मुनसिफाना नहीं थी। मेरे बाप को नाम मर्दों की तरह मारा गया है। अगर मैंने नकई कबीले की तमाम औरतों को बेवाना किया तो मैं मर्द नहीं। तुम्हारा खून बहाकर रहूंगा इब्राहिम,
1: तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा, बेकार तो तुम लोगों का खून पी जाऊंगा, खून पी
2: जाऊंगा। उठो राशिद, उठो। तुम्हारे जैसे दलेर से बईद है कि औरतों की तरह क्रिया करो। उठो और दांत भींच कर कोई तरकीब सोचो। तुम्हारा बाप बड़े फख्र से मारा गया।
3: ये जख्म सिवाय किसास के नहीं सूखेगा अमीर।
0: मैं कसम खाता हूं कि सुबह होने तक अशतक के बेटे का सर नेजे पर उठा लूंगा।
2: मरहबा बहादुर, मरहबा। अब से तुम्हारे बाप की जगह पर कूफे के सिपाहियों के अमीर

0: तुम हो। जाओ और अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करो।
1: जाओ।
2: जी अमीर।
0: बिलाखिर मुसीबत आ ही गई। तुम्हारा बुरा हो मुख्तार कि तुम सिर्फ बुग्ज लिए बैठे हो।

0: जो कुछ हुआ उसी में खैर है। अयाज इब्न मुजारिब के मारे जाने से इब्राहिम ने कयाम का पहला कदम अपने नाम लिख दिया। अयाज कोई मामूली आदमी न था, उसके मरने की खबर बगैर किसी शक के दुश्मन को हिला के रख देगी। इस हादसे को नेक फाल करार देकर आज ही रात से कयाम कर लेंगे।
1: माफी चाहता हूँ अमीर, आज रात 12 रबी है और हमने 14 रबी की तारीख तय की थी, अपने साथियों को कैसे बाखबर कर सकते हैं?
0: जानता हूँ बिन कामिल, मगर अयाज के मारे जाने से दुश्मन दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमला आवर होगा। अगर हम उसका जवाब ना दें तो वो कयाम को नाकाम बना देगा।
2: इन लोगों के आज रात कुछ इरादे नजर आ रहे हैं,
3: शायद
2: शक मत करो, यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है।
3: खुदा करे कि कोई बुरा वाकया रोनुमा ना हुआ हो।
2: जंग के सिवा और क्या होगा बहन, वही तो है जिसके लिए मुख्तार के सर में दर्द है। अगर जंग ना हुई तो जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना मुझे।
3: जंग तो कुछ भी कह लो होकर रहेगी, खुदा करे कि उन्हें गफलत में ना डाल दिया हो दुश्मन ने। मुख्तार ने अब तक अपने तमाम साथियों को जमा नहीं किया है।
4: मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मुख्तार। खुदा की कसम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लम्हा नहीं देखा।
5: या नसरातुल हुसैन।
0: ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिन मुनकिज जाओ और छत पर आग लगा दो।

0: Andrele!
1: खुदा का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले क्या मैं मुख्तार देख लिया।
2: आज कमर दर्द रख रहा तो नहीं है ना साकिब?
3: मैंने आसमान पर एक सितारे को आपके नाम से मासूम कर दिया है। आज हर रात से ज्यादा कोहराम है।

0: आग लगा दी है?
1: नहीं अमीर, छतों पर आग जलाई है इन लोगों ने।
0: किस लिए?
1: ये मुख्तार की मौजदात में से है। मैंने सुना था कि जब मुख्तार कायम करेगा तो कूफे की छतों पर से आग उबलेगी।
0: ताज्जुब है, तो मुख्तार का इरादा हुकूमत करने का नहीं, वो रिसालत का दावा कर रहा है। पनाए खुदा, इस तुम कटे झूठे से कुछ बईद नहीं। यकीनन इस तरह के और भी

0: खींचो मारो खींचो मारो।
1: आज रात से नींद हराम है। सुनो, तुम सुन रहे हो?
0: ऐ जीतने वाले मार तुम, ये तो असहाबे बदर का नारा था।
1: आज रात से ये मुख्तार के असहाब का नारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
2: जनाब शिम कहाँ है?
3: हाँ हाँ, फिर कुछ हो गया क्या?
2: ये आवाजें नहीं सुन रहे? गुफे की छतें गोया जहन्नुम बन गई हैं। ये आग नहीं देख रहे?
1: हाँ सिपाही, क्या अशर का बेटा अब तक बाजियां दिखा रहा है?
4: जनाब शिमर, अमीन ने आपको तलब किया है।
1: तीरंदाजों को छतों पर भेज दो कि वहां छुप जाए। जो भी मशकूक सया मैदान के करीब आए उसे मार डालो। सहल, मेरे साथ आओ।

0: ये शोर तो कम से कम 3,000 फौजियों के लश्कर का है।
1: ज्ञान है, आज फिर सबसे 4 हाथ आगे है।
0: हाँ मेरा,

आइडियल लेना है अपने जवानों के लिए, अभी करबला से हमको आइडियल लेना है अपने बच्चों के लिए, अभी करबला से आइडियल लेना है अपनी ख्वातीन के लिए। ये सारे आइडियल मौजूद हैं, वो हम कब इस्तेमाल करेंगे? जिन लोगों ने ये काम किया है, करबला को उस एंगल से देखा है, उन्होंने ये काम कर लिया और काम करने के बाद दुश्मन को शिकस्त भी दे दी। हम अभी अब आपस ही में टकरा रहे हैं। देखिए, एक मसला जो मैंने उस दिन मजलिस में कहा था कि जनाब अली असगर की शहादत करबला का टर्निंग पॉइंट है। कुछ भी कर सकते हैं कायनात में आप इस वाक़े से, फकत करबला के इस वाक़े से, अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल कर लिया आपने तो। यकीन मानिए, आज से तकरीबन 14 साल पहले यानी 2003 में ईरानियों ने एक प्रोग्राम शुरू किया, तवज्जो रखिएगा, हुसैन डे मनाते हैं ना, यहाँ भी होता होगा, पूरी दुनिया में मनाते हैं लोग, हुसैन डे, अब्बास डे, ये दो डे मनाए जाते हैं। ईरानियों ने कहा कि अभी ज़रूरत है अली असगर डे की, यौम अली असगर शुरू किया 2003 में, 14 साल हो गए। आप जानते हैं उसका असर क्या हुआ? कुछ होता नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ ऐलान होता है कि मुहर्रम जब आएगा, महीना मुहर्रम का, उसका जो पहला फ्राइडे होगा उसमें वो माएँ जिनके पास गोद में बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लेके आ जाएं, वहाँ पे अली असगर के वो जो बच्चों को कपड़ा पहनाया जाता है कि स्पेशल कपड़ा बनाया जाता है, वो कपड़ा पहना के बच्चों को लेके मजलिस में आ जाइए। कुछ नहीं करना है, बस अपने बच्चों को हाथों पे बुलंद करके कहना, ये इब्न अल हसन, ये हमारे बच्चे हैं, इनको अपनी लश्करी में कबूल कर लीजिए। कितना सादा सा काम है, लेकिन ये आज की ज़रूरत है। अगर आज हमने ये काम कर लिया, अभी मैं जब अर्ज करूंगा तब आप सोचेंगे कि हाँ मैं क्यों बात ये कह रहा हूं। देखिए, बच्चों के ऊपर जो जुल्म होता है वो बहुत जल्दी आयां हो जाता है। 4 साल पहले जब सीरिया की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे और वहाँ से लोग मुहाजिर बन के यूरोप जाना चाह रहे थे वाया टर्की, चूँकि रास्ता टर्की से होता है, और उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, इलीगल जा रहे थे पानी के जहाज़ से, तो एक हादसा पेश आया। एक पानी के शिप उन लोगों को लेके यूरोप की तरफ जा रही थी, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे उस शिप के अंदर, नतीजा ये हुआ कि वो शिप डूब गया, उसमें बहुत से लोग डूब गए। एक खबर आई और एक तस्वीर आई, एक 2 साल का बच्चा था जो उस पानी में डूबा समंदर में, और बहते बहते बहते बहते टर्की के किनारे आ गया, समंदर के किनारे। तस्वीरें मौजूद हैं फेसबुक पे। उस दिन मैं तलाश कर रहा था इस पढ़ने के लिए कि मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, इत्तेफाक से जनाब महबूब सोमजी साहब ने फेसबुक पे डाला वो, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। वो बच्चा पेट के भर लेटा हुआ है, मरा हुआ, जाइए 4 साल पुराने तारीख जाके पढ़िए। यकीन मानिए, इस एक बच्चे की मौत ने यूरोप वालों को मजबूर कर दिया अपना रास्ता खोलने के लिए, उन मुहाजिरीन के लिए जो सीरिया से आ रहे थे। सब ने कहा कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। ज़ाहिर है कि बच्चा कितना मजलूम क्यों ना हो, अली असगर के बराबर नहीं है। जनाब अली असगर की जो मजलूमियत है उसको पेश करना अब हमारा और आपका फ़न है इस ज़माने में। इस ज़माने की ज़रूरत ये है कि हम अली असगर की मजलूमियत को पेश करके जालिम के चेहरे से जुल्म का नकाब उतार दें, और किया ये काम ईरानियों ने, कामयाब। इस साल यानी 14 साल के बाद इस साल ईरान में 4000 जगह पे यौम अली असगर मनाया गया, और पूरी दुनिया में 41 कंट्रीज़ में यौम अली असगर मनाया गया। आप कहीं मना लिया, क्या हुआ जानते हैं क्या हुआ? सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में उस यूनिवर्सिटी के इमाम जिसका नाम है मोहम्मद बिन सऊद, वो कहता है कि इस बच्चे के वाक़े से डरो, ये बच्चा एक दिन हमको रुसवा कर देगा। ये जो अली असगर डे मनाया जा रहा है ये हमारी रसवाई का सबब है। अल्लाह अकबर, जब अली असगर जिंदा थे तो यजीद को रसुवा किया, जब दुनिया से चले गए तो यजीदियों को रसुवा कर रहे हैं। उसके बाद हॉलैंड में एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ, और उस सेमिनार में ये बात कही गई
کہ ذرا اس واقعے پر غور کریے۔

हम भी तो इंतज़ार कर रहे हैं इमाम का, आप भी तो इंतज़ार कर रहे हैं इमाम का, हिंदुस्तान में जो शिया वो भी तो कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो शिया वो भी तो कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को कहना चाहिए था ये जो शिया है वो इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ईरानियों को टारगेट क्यों बनाया? क्योंकि ईरानियों के इंतज़ार से उनको तकलीफ़ है, क्योंकि ईरानियों का जो इंतज़ार है उसमें जश्न भी है, उसमें सलवातें भी हैं, उसमें मजलिस भी है, उसमें महफिल भी है, और उसमें दुश्मन को रोकने की हिकमत अमली भी है। हमारे इंतज़ार में सिर्फ जश्न है, सिर्फ सलवातें हैं, हमने दुश्मन को रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उनको हमको हमारे इंतज़ार से कोई मसला ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप करते रहिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ अपने ऊपर कि उसने हमको क्यों नहीं कहा कि सारे शिया, लिहाजा इंतज़ार देखिए सब कर रहे हैं इंतज़ार, लेकिन कुछ लोग इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि सवाब मिलेगा, कुछ लोग इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन को उनकी औकात में रखना है। दोनों के इंतज़ार में फ़र्क है, सवाब सबको मिलेगा। ये चीज़ें जो वाकयात अल्लाह ने हमारे आगोश में ला के रखे हैं इनको सही तरीके से यूज़ करना सीखें। बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे इन बच्चों की तरबियत, क्योंकि जनाब सकीना की शबे शहादत है तो मैंने बेहतर समझा कि इस मौजू को छेड़ा जाए। ठीक है, करबला को बाकी रखने में जनाब सकीना का एक बहुत बड़ा रोल है, एक किरदार है कि जब वो आवाज़ बुलंद होगी तायनात में रोने की, हर आदमी तड़प जाएगा कि इस बच्ची को किसने मारा। बस आखिरी बात और आपकी जहमत में, चूँकि मसाए आप थोड़े से ज़्यादा होंगे, आप कुरान जाके पढ़ें, कुरान ने कुछ उसूल और कुछ कंडीशन और कुछ कानून बयान किए बच्चों से और माँ बाप के दरमियान। उन कंडीशन को फॉलो करेंगे तो बच्चा दीनदार होगा। कुरान कहता है कि तुम अपने बच्चों के अंदर तौहीद का पैगाम दो, उनको तौहीद सिखाओ। जनाब लुकमान सूरह लुकमान में अपने बेटा से कहते या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला, बेटा शिर्क ना करना। देखिए मोहब्बत देखें, या बुनैया ए मेरे बेटे, हम कैसे पुकारते हैं अपने बच्चों को? जो खुद नाम रखते हैं उसी को बिगाड़ देते हैं। ये बच्चे के अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे को आप पुकारें तो पूरे एहतराम से पुकारें। जितना आप उसका एहतराम करेंगे उतना उसके अंदर सलाहियतें पैदा होती चली जाएंगी। इस मसले में वाकई ईरानियों का जवाब नहीं है। मैं इतने दिनों से जो अपने बच्चों को पुकारते हैं वो आदमी सोचता रह जाए, यानी बाप अपने बेटे को पुकार रहा है तो कहता है आगा मोहम्मद, मोहम्मद नहीं पुकारता, मोहम्मद के आगे आगा लगाता है। बेटी जब माँ को पुकारती है मामा, तो माँ जवाब देती है जान है मामा। देखिए कितना रिस्पेक्ट है, कितनी इज्जत है। इस इज्जत से बच्चे के अंदर हौसला बढ़ता है। जनाब लुकमान अपने, जनाब लुकमान इतने अजीम अपने बेटे को पुकार के कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला, ए बेटा शिर्क नहीं करना, खुदा की तौहीद पे बाकी रहना। दूसरी जगह पे कहते हैं या बुनैया अकीमिस सलात, अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा फौरन जैसे जनाब लुकमान ने अपने बेटे को कहा नमाज पढ़ो, आप भी अपने बेटे को कहिए नमाज पढ़ो। फरावान मतालिब हैं कुरान के अंदर। मसलन एक जगह पर आकर कुरान कहता है कि कभी भी अगर आपके बच्चे से कोई काम पूरा ना हो पाए तो उसको मायूस ना करिए, उसको झिड़किए नहीं कि तुमने ये काम नहीं किया। जनाब याकूब ने जब अपने बच्चों को मिस्र भेजा जनाब यूसुफ की तरफ, वहाँ और वहाँ जाने के बाद जो है वो बिन्यामीन जो छोटा भाई था जिसने कहा था कि यूसुफ को मारो नहीं कुएं में डाल दो, जनाब यूसुफ ने कटोरा रख के उसको वहाँ पर रोक लिया और ये दोनों वापस, ये सब सारे भाई मुँह लटकाए हुए वापस आए, तो बाप को तो डांटना चाहिए था कि तुमने, हमने तो एक भाई को लेने के लिए भेजा तुम दूसरे को भी दे के चले आए। जनाब याकूब कहते हैं ला तअसु मिन रौहिल्लाह, देखो रहमत परवरदिगार से मायूस ना हो, फिर मेहनत करो। जज्बा पैदा होता है इससे, इन चीज़ों से बच्चों के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब ये बहुत मुस्तकिल एक टॉपिक है ये कि किस तरह से कुरान और हदीस के आईने में हम अपने बच्चों की तरबियत करें। बच्चों को गुमराह होते देख रहे हैं, खुदा ना करे अगर वो गुमराही की तरफ जा रहे फौरन रोकें, जैसे जनाब नूह ने अपने बेटों को बुलाया था, नहीं आया बात अलग है, लेकिन हर बाप की जिम्मेदारी कि अगर बच्चों को गुमराह होते हुए देख रहे हैं फौरन कहें ये गलत काम कर रहे हो तुम। ये कुरानी उसूल हैं, ये कुरानी कवानीन हैं, इन पर अमल करेंगे तो एक सालेह माशरा आएगा ना। इंसान ज़िंदगी भर रोता रहे

तमा रख लिया तो देखो उसके मुंह पे तमाचा ना मारना। मौला आपको ये बर्दाश्त नहीं कि किसी बेटी का नाम अगर फातिमा हो तो उसके बाप उसको तमाचा न मारे। ए मौला जरा करबला से लेके शाम तक आइए। सकीना के मुंह पे इतने तमाचे पड़े कि नील पड़ गया। पानी मांगती है जालिम पानी नहीं देता। कूफे से गुजरा ये काफिला, शाम में दाखिल हुआ। शाम में जब दाखिल हुआ ये काफिला तो आप जानते हैं शाम की कैफियत क्या है कि सब दुश्मनाने अहले बैत हैं। शाम में जैसे ये काफिला दाखिल हुआ और मालूम हुआ कि कुछ खारजी आए हैं तो औरतें अपने घरों पर चढ़ गईं और वहाँ से पत्थर फेंक रही हैं, सदक़े के खजूर फेंक रही हैं। सकीना प्यासी है लेकिन गैरत पानी मांगने नहीं दे रही है। और ये मरहला तय करते करते उस दरबार में आई जहाँ 700 कुर्सी नशी हैं, जहाँ यजीद अपने तख्त पे बैठा हुआ है। यजीद के तख्त नीचे हुसैन का सर एक तश्ते तला में रखा हुआ है। एक दफ़ा जनाब सकीना में बाबा को देखा, सोचे कितने दिन के बाद बाबा को गौर से देख रही है। यजीद कहता ये बच्ची कौन है? का ये हुसैन की बेटी सकीना है। का अच्छा यही वो सकीना है जिसके बारे में मशहूर है कि अपने बाबा को बहुत चाहती है, इसका बाबा इसको बहुत चाहता है। का हाँ यही वो बच्ची है जो अपने बाबा को बहुत चाहती है। यजीद जनाब सकीना को खिताब करके कहता है सकीना मैं तुम्हारी मोहब्बत को तब मानूंगा जब तुम्हारे बाबा का सर उठ के तुम्हारी आगोश में आ जाए। बच्ची की मोहब्बत का इम्तिहान जनाबे सकीना ने अपने जले हुए दामन को फैलाया। ए बाबा आज बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है। ए बाबा आज बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है। एक दफा सरे हुसैन उठा बेटी की आगोश में आया, सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया। काफिला कैद खाने शाम में, एक ऐसा कैद खाना जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ छत नहीं थी, यानी दिन की धूप होती थी और रात की ओस होती थी। बहुत रोएंगे अजीज़ों, 4 साल की बच्ची है, घर से जुदा हो चुकी है, बाबा मारा जा चुका है, हाथों में रसन बंधी हुई है। सकीना का रोज़ का तरीक़ा ये था कि दरे जिंदान पे शाम को आके बैठ जाती थी, न जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। दर जिंदान पे आके बैठती थी और आसमान को देखती थी कि कुछ परिंदे हैं जो जा रहे और आ रहे हैं। समझ में आया नहीं कि ये माजरा क्या है। एक दिन अपनी फूफी से कहती, फूफी अम्मा ये समझ में नहीं आता ये परिंदे कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। फूफी अम्मा ने कहा बेटी ये सुबह को अपने वतन से निकल के तलाश रिस्क में जाते हैं और जब शाम होती है तो अपने घरों को वापस आते हैं। बस ये जो कहा तो बड़ी मासूमियत से कहती है फूफी अम्मा ये परिंदे तो अपने वतन वापस हो जाते हैं। ए फूफी अम्मा मैं कब वतन जाऊंगी। सकीना को बड़ी तमन्ना थी वतन जाने की। हाय सकीना वतन जाना नसीब ना हुआ। कैद खाने शाम में एक दिन रात का वक्त था, जनाबे सकीना चौंकती है, नींद से जागती है, कहती है बाबा बाबा बाबा। जनाबे ज़ैनब करीबा कहती बेटी बाबा को क्यों याद कर रही हो? का मेरा बाबा अभी यही था, मैंने अपने बाबा को देखा है, मेरा बाबा मुझे आगोश में लिया था। जनाबे ज़ैनब समझा रही है लेकिन जनाबे सकीना समझ नहीं रही है। नहीं बुबी अम्मा मेरा बाबा आया था, मुझे अपने कलेजे से लगाया है, मेरे बाबा मुझे प्यार कर रहा था। अब जो आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई, यजीद के कानों तक आवाज़ पहुंची। यजीद ने कहा कौन रो रहा है? का हुसैन की छोटी बेटी सकीना अपने बाबा को याद करके रो रही है। न जाने यजीद के दिल में क्या बात आई। का हुसैन का सर सकीना के पास भेज दो। हुसैन का सर जो जिंदान में जनाबे सकीना के पास आया, बच्ची ने बाप के सर को लिया, गिरिया करना शुरू किया। बाबा बाबा आपने जो बालियां पिराई थी जालिमों ने अपने हाथों से छीन ली। ए बाबा जब चचा मुस्लिम की शहादत हुई थी तो मैंने देखा था आपने उनकी बेटी के सर पे हाथ फेरा था। ए बाबा मैं भी इंतजार में थी जब आपका इंतकाम की शहादत हो गई तो मैं भी ये सोचती थी कोई आएगा सर पे हाथ फेरेगा। बाबा आए तो लेकिन तमाचे लगाने के लिए। और
اور گریہ کرتے کرتے بچی ایک دفعہ خاموش ہو گئی. مجلس ختم ہوئی عزیزو, بچی خاموش.

की मैयत उठाई है। ए मौला, अली असगर की मैयत उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मौला, जब आप अली असगर की मैयत उठा रहे थे तो हाथों में हथकड़ियां तो नहीं थी?

0: कुम शहर बवक्त असर 22 मार्च 1963। शाह की फौज मदरसा फैजिया में दाखिल होती है और तलबाओं असाज़ा पर तशद्दुद करती है, जिस बिना पर बाज लोग शहीद और जख्मी हो जाते हैं। फैजिया से कुछ दूर आकाए रूहुल्लाह खुमैनी का घर था और घर के बाहर आकाए खामनाई और उनके दोस्त बारी बारी पहरा दे रहे थे कि आकाए खुमैनी की तरफ से पैगाम आया कि आप सब लोग चले जाएं।
1: इमाम की जानिब से मेरे लिए पैगाम आया है कि आप सब चले जाएं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। कहा इमाम कहते हैं कि मैं इस बात पर राजी नहीं हूं कि कोई यहां ठहरे।
0: आकाए खामनाई मदरसा हुजतिया में अपने कमरे में वापस आ गए। उनका ख्याल था कि मदरसा फैजिया के जैसा वाकया इधर भी रूनुमा हो सकता है। वो सोच रहे थे कि पहलवी निजाम के साथ मुकाबला करने के दौरान हो सकता है कि वो शहीद हो जाएं। उस वक्त उनकी उम्र 24 साल थी, लिहाजा वो बैठ गए और वसीयत लिखना शुरू कर दी।

0: साल 1963, फकीह और बादशाह के मुकाबले का दूसरा मरहला। शाह की अमेरिका से वापसी के कुछ दिन बाद मोहम्मद रजा पहलवी ने बहुत जल्द इक्तसादी इस्लाहात की खबर दे दी और इसका नाम सफेद इनकलाब रखा। इसकी एक अहम शिक ज़राई इस्लाहात थी।
1: असल बहस मुखालिफ ज़री इस्लाहात पर थी, क्योंकि सफ़ेद इनकलाब में ये ज़री इस्लाहात ईरानी मुल्की ज़रात को तबाह कर रही थी। किसान को खाद और बीज दिया जा रहा था, लेकिन उनका किसानों के साथ राबता गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना था। अलबत्ता इससे महसूल अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें किसी एक को काम सौंपा गया था। इसके बाद हुकूमत का किसान के साथ राबता ख़त्म हो गया और मोहम्मद रजा पहलवी ने मुल्की ज़रात को नाबूद कर दिया। शाह ने ज़मीनों को छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया और फिर उन्हें किसानों के दरमियान बांट दिया, यानी हुकूमत ने ज़मीन को उनके मालिकान से छीन लिया और गरीब किसानों को किसी पुश्त पनाही के बगैर छोड़ दिया। गरीब किसान के पास पैसा न होने की सूरत में जब भी खुश्क साली होगी या किसान किसी परेशानी का सामना करेगा तो उसका महसूल तबाह हो जाएगा, क्योंकि इस मौके पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। छोटी जमीनों को अगर मुनासिब पानी और खाद न दी जाए तो वो ऐसी काली मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं कि जिनमें जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर तदरीजन ज़री जमीन नाकाबले काश्त हो जाती है। ज़रात न होने के नतीजे में किसान शहरों का रुख करते हैं और वहाँ एक आम मजदूर बन जाते हैं। आकाए खुमैनी ने सफ़ेद इनकलाब की मुखालिफत की और बार बार इस मुखालिफत पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि ज़री ज़मीनों को तकसीम करो तो आबाद ज़मीनें गरीब किसानों में ना बांटो, और फिर जिन्हें तुम पुश्त पनाही के बग़ैर छोड़ दो और यूं हर चीज़ तबाह हो जाएगी, और फिर जिस तरीके से तुमने जिन्हें पुश्त पनाही के बग़ैर छोड़ दिया तो यूं हर चीज़ तबाह हो जाएगी, बल्कि उन्हें गैर आबाद ज़मीनें दो और फिर उनकी मुकम्मल पुश्त पनाही करो ताकि किसान वहाँ काश्त कर सकें। ईरान जो कि सहयोनियों और इसराइल को गिजाई अजनास और ज़री महसूलात आलात बरामद करता था, सफ़ेद इनकलाब के बाद इसराइल से गिजाई अजनास और ज़री महसूलात आलात खरीदने लगा। वो ईरान जो सबसे ज्यादा फल और सब्जियां बरामद करने वाला मुल्क था, अब शाह के तुफैल अमरीका से गंदम और इसराइल से अंडे दरामद करने वाला मुल्क बन गया। इमाम खुमैनी जिस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे थे वो अमली हो गई। इसी बिना पर उनकी मुखालिफत सही साबित हो गई।
0: शाह के सफेद इनकलाब के जवाब में आकाए खामनाई ने ईरानियों की सबसे बड़ी ईद यानी नौ रोज को यौम अजा करार दे दिया।
2: मुझे याद है कि हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इरादा किया कि दीनी तुलबा काला लिबास पहनेंगे, काले कपड़े या काली कबा पहनेंगे। हमने काले कपड़े सिलवाए, मैं भी गया काली शर्ट ली, क्योंकि काली कबा के लिए मेरे पास पैसे ना थे। हमने देखा कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर, ईद के दिन या एक दिन पहले जब हमने काले कपड़े पहने, हर किसी ने काले कपड़े पहन रखे थे, हर तरफ से आपोश लोग नजर आ रहे थे।
3: ناگهان دیدم آقا این لباس مشکی بوده خدا میده دیگه عناصر اصلی لباس مشکی تن شد پیرهن مشکی ها معروف
0: بائیس مارچ 1963 کی اثر میں آقای خامنائی اور آقای جعفر زنجانی مدرسہ حجتیہ میں آقای خامنائی کے کمرے میں تھے۔ उन्होंने इरादा किया कि फैजिया में जो आयतुल्ला गुलपायगानी ने मजलिस अज़ा का एहतमाम किया है उसमें शिरकत करें।
4: मदरसा फैजिया में आयतुल्ला गुलपायगानी की जानिब से एक मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया था। मैं उस वक्त आकाए खामनाई के कमरे में था। जब हम मदरसा हुज्जतिया से बाहर आए तो हमें इत्तला मिली कि मदरसा फैजिया पर शाह की फोर्सेस ने हमला कर दिया है और वो तलबा पर हमला आवर हो गए। हमने चाहा कि वहाँ जाएं और देखें क्या सूरत हाल है, लेकिन बाज़ अफराद ने मना किया।

0: मैंने पूछा क्यों खतरनाक है। बिलाखिर एक दो तुलबा ने हमें रोका और दरियाफ्त किया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मदरसा फैजिया। कहते हैं मदरसा फैजिया ना जाना, खतरनाक है, वहाँ तुलबा को कत्ल कर रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा आए हम चलते हैं। उनमें से एक तालिबिल्म हमारे जानने वाला था, उसने हमें पकड़ लिया और कहा मैं नहीं जाने दूंगा, किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। मैंने सोचा कि ये खुदकुशी होगी अगर हम वहाँ जाते हैं।
1: उस दिन तय था कि जो कोई भी तालिबे इल्म सड़क पर नजर आए उसे सावाक के सिपाही पकड़ लें और खूब पिटाई करें। आकाए खामनाई और उनके दोस्त ने सड़क पर जाने से एहतियात की और गलियों से होते हुए आकाए खामनाई के घर की तरफ चल पड़े।
2: इस मौके पर हमारे जहन में आया कि मुमकिन है इमाम के घर पर हमला हो जाए, लिहाजा हमें इमाम खुमैनी के घर जाना चाहिए। इसीलिए हम तेज तेज कदम उठाते हुए इमाम के घर की तरफ चलते रहे। हम गलियों से गुजर रहे थे कि अचानक एक अफसर सादा लिबास में हमारे सामने आ गया। ज्यादा शराब नोशी की वजह से वो अपने आप में नहीं था, उसके हाथ में एक चाकू था और वो सबको धमकियां दे रहा था। हमें देखते ही उसने हमें गालियां देना शुरू कर दी।
0: मैं पहले पहल मुतवज्जा नहीं हुआ, आकाए जाफर मुझसे जल्दी मामले की तह तक पहुंच गए और वो तेजी से साथ वाली गली में मुड़ गए। मैं अभी खड़ा था और मैंने देखा कि वो मशकूक अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं गली की तरफ चल पड़ा, लेकिन भागते हुए नहीं बल्कि खरामा खरामा। मैंने देखा कि वो मेरे पीछे भागा, वो चाहता था कि मुझे सड़क के बीच में लोगों के सामने मारे। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ लोगों के सामने पहुंच गया। उन्होंने मेरे लिए रास्ता बना दिया, यानी लोगों ने महसूस किया कि मैं इस आदमी से फरार हो रहा हूं। उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया और गली के अंदर मुझे अपने दरमियान ले लिया। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आना चाहता है, लेकिन लोगों ने उसे नहीं आने दिया।

0: आकाए खामनाई और उनके दोस्त रूहुल्ला खुमैनी के घर पहुंचने में कामयाब हो गए।
1: हमने देखा कि इमाम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और इमाम खुमैनी नमाज पढ़ रहे हैं। शहीद अराकी दरवाज़े पर मुहाफ़िज़त के लिए खड़ा था। हमने उससे पूछा, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया? हालात ख़राब हैं, किसी भी वक्त इमाम के घर पर हमला हो सकता है। शहीद अराकी ने कहा, मैं बंद करना चाह रहा था कि इमाम ने मना कर दिया और कहा, अगर दरवाज़ा बंद करोगे तो मैं हज़रत मासूमा के हरम चला जाऊँगा और वहाँ तकरीर करूँगा। इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि शायद इस तरह इमाम के लिए कोई हादसा पेश आ जाए, लिहाजा दरवाज़ा बंद नहीं किया और यहीं बैठ गया। हम भी इमाम की हिफाजत करने की खातिर वहीं ठहर गए, कहीं नहीं गए।
0: अंदर इतला पहुंच चुकी थी कि शाह के सिपाहियों ने फैजिया पर हमले के दौरान एक तालिबे इल्म शहीद और मुतादित लोगों को जख्मी कर दिया है।
1: हम वहीं खड़े रहे और फिर जब इमाम की नमाज ख़त्म हुई, हम घर के अंदर चले गए। हम इमाम के गिर्द जमा हो गए। आकाए खामनई ने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हम इमाम के पास ही बैठ गए। फिर कुछ लोग जिन्होंने फैजिया का वाकया अपनी आँखों से देखा था, आए और रोने लगे। इमाम ने जैसे ही देखा कि लोग रो रहे हैं तो वो बोले, क्यों रो रहे हो? क्यों दूसरों के जज्बात को सुस्त करते हो? ये एक लड़ाई है और लड़ाई में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। इसमें मारपीट से लेकर मुल्क व शहर बदरी, जेल और कत्ल होना है। इस मौके पर इमाम खुमैनी ने कसम खाकर कहा, खुदा की कसम, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ कि वो यहाँ हमला करें और मुझे कत्ल कर दें, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये तहरीक मजबूत कदमों और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगी। इमाम की गुफ्तगू बायस बनी कि गिरिया बंद हो गया और तालिब इल्मों के चेहरों पर इत्मीनान और जोश जज्बा आया था।

0: मैंने महसूस किया कि मुझ में अब इतनी ताकत और जुर्रत आ गई है कि अब अगर वो सारे लोग और एक लश्कर फौज भी हमला कर दे तो मैं अकेला उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। वल्लाह, इमाम की गुफ्तगू ने इस कदर गहरा असर किया कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज भी जो मैं उन वाकयात को तफसील के साथ जिक्र कर रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि उस गुफ्तगू ने मुझ पर इस कदर गहरा और अजीब असर किया था।
1: तीन दिन तक मदरसा फैजिया में सावाकी जुल्म व सितम जारी रहा। सारे कमरे, लाइब्रेरी, तलबा और असाज़ा पर हमला किया गया और उन्हें जदो कोप किया गया। हुज्जत यह कि तलबा, जिनमें आकाए खामनाई भी शामिल थे, उनका गुमान था कि मुमकिन है यहाँ भी हमला हो जाए, लिहाजा सारे तलबा वहाँ से चले गए। शाही हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ इमाम खुमैनी ने फैसला किया कि वो फैजिया जाएंगे, जिसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे।

26 मई 1963 बामुताबिक 2 मुहर्रम आकाए खामनाई बीरजन पहुंचे और वहां एक दीनी होजाए इल्मिया के मेहमान बने। वहां से आपने मसाजिद, इमाम बारगाहों, घरों में और कई एक तंजीमों के प्रोग्रामों में तकरीर शुरू की। यहां तक के 7 मुहर्रम का दिन आ गया। आपने इरादा किया कि बीरजन की मरकजी जामे मस्जिद मुसल्ला में खिताब करें।

0: बहुत गिरिया किया, इस कदर ज्यादा कि जब से मैं मेंबर पर जा रहा था तब से उस वक्त तक मैंने अपनी उम्र में कभी ऐसा नहीं देखा था। मैंने तुलबा और असातिज़ा पर तशद्दुद, कुरान और अमामे की बेहुरमती और माल और असबाब को गारत करना, नेज जो कुछ देखा था और लोगों से सुना था सब कुछ बयान कर दिया। इसके बाद मैंने करबला वालों का जिक्र मसाइब किया। मैंने महसूस किया कि करबला की मुसीबत पर लोगों ने ज्यादा अक्सुल अमल नहीं किया। हकीकत यह थी कि जाहिर में फैजिया के मसाइब की तासीर मसाइब करबला पर गालिब आ गई। उस वक्त मैं मुतवज्जा हुआ कि इमाम ने किस कदर गहराई, हकीमाना और दूरंदेशी के साथ इस वाक़े की तासीर का अंदाज़ा लगाया था, और मुहर्रम से ज़्यादा मौसर कोई और दूसरा वक्त ना था जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मसाइब के साथ ही मुस्तकबिर हुकूमत के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया जाए।
1: नौ मुहर्रम की सुबह इंटेलिजेंस फोर्सेस उस मदरसे में पहुंची जहां आकाए खामनाई रिहाइश पजीर थे।
0: जब हमने फजर की नमाज पढ़ ली, मैं ताकीबात पढ़ रहा था, और चूंकि मदरसे का दरवाजा वगैरह नहीं था, मैंने देखा एक आदमी मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा, उठो मेरे साथ मरकज़े अमन चलो, बाकी बाद में बताएंगे। मैंने पूछा, तुम मुझे हुक्म पहुँचाने आए हो या गिरफ्तार करने आए हो? कहता है कि मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। फिर मैंने दो रकात नमाज इस्तखारा पढ़ी और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया। मैंने नमाज पढ़ी और अस्तखीर की तस्बीह की, तो फिर मैं उनके हमरा चल पड़ा। वो जो मामूर मेरे कमरे में थे, उन्हें मेरे अमल ने मुतासिर किया और उनके लहजे और गुफ्तगू में तब्दीली थी, जबकि मुझे बिल्कुल भी खौफ ना था, मैं पुरसकून था। अलबत्ता ये सूरत हाल मेरे लिए पहली मरतबा थी। इसके बावजूद मुझे किसी किस्म की घबराहट ना थी, किसी हद तक हैजानी कैफियत थी लेकिन खौफ और हिरास ना था। ये अजीब बात थी।
1: आकाए खामनाई को करीबी थाने में ले जाया गया और वहाँ तफ्तीशी अफसर ने पूछगछ शुरू कर दी। आपकी जिंदगी में ये पहली मर्तबा था कि आपसे पूछगछ हो रही थी।
0: तफ्तीशी अफसर ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? मैंने कहा, मदरसा फैजिया के बारे में लोगों को बताया है, क्योंकि ये मसला मेरे लिए अहम था। मैं खुद भी एक तालिबे हूँ, मैंने ये वाकया देखा है, मुझ पर इसके असरात मुरतब हुए हैं। मैं चाहता था कि लोग भी इस वाकये से आगाह हों। मुझे नसीहतें करना शुरू हो गया। मुझे कहा, तुम वादा करो आइंदा ऐसी बातें नहीं करोगे और इसके बाद तुम जा सकते हो। मैंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहता है कि अगर तुमने वादा ना किया तो मैं मजबूर हूँ कि तुम पर सख्ती करूँ, क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया है। मैंने कहा, मुझे भी हुक्म दिया गया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस पर बात करूँ। एकदम उसकी आँखें खुल गईं। वो सोच में पड़ गया कि क्या हुक्म हो सकता है, किसने हुक्म दिया है, या कोई बात इससे भी ज्यादा अहम है। मुझसे पूछता है कि तुम्हें किसने हुक्म दिया है? मैंने कहा, खुदा ने। उस आदमी पर इस बात का गहरा असर हुआ, लेकिन फिर बोला, इस काम में खतरा है, जहमत और तकलीफ है, मुश्किलात हैं, तुम अभी जवान हो। मैंने जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि तुम लोग सजाए मौत देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इससे बड़ी कोई सजा है ही नहीं। मैं खुद को सजाए मौत के लिए तैयार कर चुका हूँ, जबकि बाकी सब सजाएं इससे कम हैं।
1: आकाए खामनाई को इस शर्त पर कि आइंदा वो मेंबर पर नहीं जाएंगे और कोई तकरीर नहीं करेंगे, रिहा कर दिया गया। लेकिन बीरजन से दूर आकाए रूहुल्लाह खुमैनी ने 10 मुहर्रम को पहलवी शाख के खिलाफ धुआंधार तकरीर की। फकीह ने शाह पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस पर अमरीका और सहयोगियों की गुलामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने उसे एक बुरा और बदबख्त आदमी कहा। लिहाजा 5 जून 1963 को 48 घंटों से कम वक्त में रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन सुबह कुम, तहरान, शिराज और मशहद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। शाह की पुलिस ने उन मुजाहिरीन पर गोली चला दी जो अपने मर्जाए तकलीद की रिहाई का जायज मुतालबा कर रहे थे। तकरीबन 3000 लोग शहीद हो गए। इनकलाब की कामयाबी के बाद इनकलाबी अदबियात में उस दिन को 5 जून के क्याम के नाम से याद किया जाता है।

10 मुहर्रम को बादज नमाज जहर का वक्त था या शाम थी, मैंने इमाम खुमैनी की गिरफ्तारी की खबर सुनी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या यह मुमकिन है कि इमाम खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे लिए यह तसव्वुर करना भी मुहाल था कि इमाम खुमैनी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना मानने वाली बात थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों हुआ, कब, कैसे? मैंने सोचा अब ये

की सरहद पर वाके शहर है। यहाँ के शहरी ज्यादातर बलोच हैं, अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात की है और कुछ शिया इसना अशरी भी है।

0: हाँ, इनफरादी सेल थे। जब मैं कैद में था तो मैंने कजल किला की एक तस्वीर जहन में बना ली थी। फिर जब मैं रिहा हुआ तो मैंने कुछ इधर उधर की मालूमात और अपनी जहनी तस्वीर के मुताबिक कागज पर कजल किला का एक नक्शा बनाया ताकि अपने दोस्तों को दिखा सकूं। इनफरादी सेलों में से बाएं तरफ के एक सेल में मुझे रखा गया था।
1: 26 फरवरी 1964 को आके खामनाई की रिहाई का हुक्म जारी हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 25 बरस थी। आपने तेहरान छोड़ने से पहले इरादा किया कि अपने कैदी दोस्तों से मुलाकात करें जिनके साथ एक वक्त गुजरा था। आपने किताबें, फल, किशमिश और हलवा खरीदा। मजीद हर कैदी दोस्त की पसंद के मुताबिक कुछ ना कुछ तोहफा ले लिया था ताकि वो खुश हो जाए। आपका दोबारा कैद हो जाने का तजुर्बा था, लेकिन ये पहली मर्तबा था कि आप कैदियों से मुलाकात के लिए जेल जा रहे थे। आपने वहां बाज पुलिस वालों के लिए भी तोहफे खरीदे। ये काम आपके लिए नया, अजीब और खुशी वाला काम था। कजल कला तेहरान से रिहाई के बाद आके खामनाई वालदेन से मिलने के लिए मशहद चले गए। वह अपने वालिद की आंखों की बीमारी के बढ़ने से बेखबर थे। आके जवाद खामनाई की आंखें बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें चलने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था।
0: इस मौके पर मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि वालिद साहब चलने फिरने के लिए किस कदर किसी सहारे के मोहताज थे। खास तौर पर उस आखिरी साल के जब मैं कुम या इनकलाबी सरगर्मियों में मसरूफ था और मुझे इस सूरत हाल की खबर ना थी जिसमें वालिद साहब ने अकेले ही वक्त गुजारा। ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल और नागवार थी।
1: बाप बेटे ने इरादा किया कि इलाज की खातिर तेहरान जाएं। आके जवाद बहुत से डॉक्टरों के पास गए, लेकिन सबने कहा अब आंखें काबिले इलाज नहीं। इसी दौरान इमाम खुमैनी की रिहाई और कुम वापसी की खबर शाये हुई। वो 10 महीने तक कैद रहे थे। जब तेहरान में खबर आम हुई तो आके खामनाई वालिद साहब के हमरा कुम चले गए।

0: तुम हाथ से निकल जाएगा। और मैं अपनी दुनिया और आखिरत को कुंभ में देख रहा था। मैं ऐसा तसव्वुर कर रहा था कि मेरी दुनिया और आखिरत कुंभ में ही है। कुंभ से हाथ खींचना यानी दुनिया और आखिरत से हाथ धोना है। मेरे उस दोस्त परवरदिगार उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए ने मुझसे एक अजीब जुमला कहा जिसने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर किया। उसने कहा, तुम खुदा की खातिर जाओ मशहद में अपने वालिद के पास ठहरो, खुदा तुम्हारी दुनिया और आखिरत को कुंभ से मशहद ले आएगा। ये सुनने के बाद मैं अचानक मुनकलिब हो गया और मैंने सोचा कि हकीकत में अगर मेरी दुनिया और आखिरत कुंभ में होगी तो सच यही है कि वो कादर मुतलक है। मैं जब खुदा की खातिर ये काम करूँगा तो खुदा भी ऐसा ही कर सकता है। मैंने कहा, मुझे कबूल है। दोस्त के पास से उठा और घर आ गया। मैंने माँ बाप से कहा, मैं मशहद ही में रहूंगा। वो खुशी से यकीन नहीं कर रहे थे कि क्या ये मुमकिन है कि मैं मशहद ही में रहूंगा।
1: आकाए खामनाई को मशहद वापस आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उनकी वालदा खानम खदीजा अपने बेटे की शादी की फिक्र करने लगी। आकाए खामनाई ने मोहम्मद इस्माइल खजस्ता बाकरजादा की बेटी से शादी कर ली। आपकी जौजा का नाम मंसूरा और उम्र 17 बरस थी जबकि आकाए खामनाई की उम्र 25 बरस थी।

आदत है बस शब शहादत की मसाहब के मसाहब पढ़ने, इसी शब की बात है। एक मरतबा दिन भर रो रो कर जो है वो सकीना रात को सो गई, सो तो गई लेकिन एक मरतबा जो है आधी रात को फिर उठती है, फिर बैन शुरू करती है। वाह बताए मेरा बाबा, वाह कुर्रत आईना आए मेरी आंखों की ठंडक, वाह हुसैना ए मेरा बाबा। अब जो है वो सब उठते हैं, सज्जाद उठते हैं, ज़ैनब उठती है, ए बेटी क्या बात है, अभी अभी तो तुम सोई थी। कहते बाप पूपी अम्मा मेरा बाबा कहाँ गया। कहते तेरा बाबा जो है वो करबला में। कहते नहीं, अभी कुछ ही देर पहले मेरी आंख बंद हुई, मैंने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, मेरा बाबा मुझसे कह रहा था सकीना मैं तुझे लेने आया हूँ, फिर से गायब हो गया। अरे मेरा बाबा कहाँ गया। रिवायत के जुमले है, एक मरतबा इमाम सज्जाद ने सकीना को गोद में लिया, लेकिन सकीना रिवायत के जुमले इतना गिरिया कर रही थी, इतना गिरिया किया वो खुशिया अलैहा, एक मरतबा गशी तारी हो गई। बस जैसे गशी तारी हो गई, जैसे सकीना बेहोश हो गई, एक मरतबा बीबियों ने मातम शुरू किया। वो दज्जू बिल बुका, वो हस्तु आला रू से हिमत तुराब, अरे मिट्टी उठाकर अपने सरों पर डालना शुरू किया, अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया। एक मरतबा वो जद्दतुल अहज़ान, रिवायत के जुमले, एक मरतबा रात को फिर जो है आह बुका शुरू हो गए। ये आवाज जो है वो यजीद के महल से टकराई, यजीद अपने हुजरे में सो रहा था। अब वहां की दास्तान सुननी है तो सुनिए। अब रावी जो है, रावी का नाम रियादुल कुद्स की रिवायत, रावी का नाम ताहिर इब्न अब्दुल्ला दमिश्की, वो रिवायत नकल करता है, कहता है इस वक्त मैं यजीद के हुजरे में था, यजीद का सर मेरे जानों पे था, एक मरतबा मैंने और मेरे सामने जो है मजलूम करबला हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर पड़ा था, टश ने सर के ऊपर जो है कपड़ा रखा हुआ था। तो एक मरतबा मैंने सुना जिंदान से रोने की आवाज, आधी रात का वक्त है, एक मरतबा रोने की आवाज आई, बस जैसे रोने की आवाज, ये ताहिर इब्न अब्दुल्ला दमिश्की कहता है, कहता जैसे रोने की आवाज आई मैंने क्या देखा, अरे मैंने देखा कि तश पे जो सर के ऊपर कपड़ा था कपड़ा हटता है। देखिए रियाजुल कुछ का हवाला देता हूं मैं, कहते तश पे से पूरे रास्ते में जो है वो सर मुबारक हुसैन ने बहुत सारे मोजिजात किए, ये एक मोजिजा। ताहिर इब्न अब्दुल्ला कहता है जैसे वहां से रोने की आवाज आई, एक मरतबा जो है वो सर से कपड़ा हटा खुद ब खुद, और सर जो है वो तश से बुलंद हुआ, आसमान में जमीन हवा में मुअल्लक हो गया। एक मरतबा जिंदान की तरफ मुतवज्जे होता है और हुसैन कटे हुए सर से कहते हैं या उख्ती, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, सकीती इब्नती, अरे मेरी बच्ची को खामोश कर दे। बस वहां जिंदान की आवाज या हुसैन की आवाज, ताहिर कहता है कि यजीद की आंख खुली। एक मरतबा परेशान, वहां जिंदान की आवाज आ रही या हुसैन का सर जो है वो हवा में मुअल्लक, कहते ओ क्या रहा। ताहिर कहता मैंने सब बताया, वहां से रोने की आवाज आई, एक मरतबा कपड़ा हटा, सर उठा, मुतवज्जे हुआ, अपनी बहन को पुकार रहा है, सकीती इब्नती, मेरी बेची, मेरी बच्ची को जो है खामोश कराए बहन। यजीद कहता सबसे पहले सर को पकड़ के तश्त में रखो, पकड़ के रखा गया। कहते जरा पूछो क्या माजरा है। सिपाही जाते आते कहते अमीर बच्ची को बाबा की याद आ रही, अच्छे बाबा की याद आ रही है, अपना सर दे दो, अपने बाबा का सर, शायद खामोश हो जाए, शायद खामोश हो जाए। ये जो है ताहिर की रिवायत, यहां तक ताहिर कहता है कनीजे आए, सर को तश में रखा हुआ था, सर के ऊपर कपड़ा रखा और दो कनीज निकली, महल से निकली जिंदान की तरफ। अब आइए जिंदान की रिवायत सुनिए। जिंदान की रिवायत कहती है एक मरतबा दरवाजा खुलता है, दो कनीजें आती है, हाथ में तश्त है, बीबियां परेशान, सकीना जो है अब इफाका हो गया है, अब परेशान, तश्त को सामने लाके रखा गया, एक कनीज ने तश्त को रखा, दूसरी कनीज आगे बढ़ती है, तश्त पे से, अरे तश्त पे से कपड़े को हटाती है, दो आवाज एक साथ बुलंद होती है, एक तो पहले सकीना की आवाज।
अरे ये

किसका सर है, बस इसके साथ साथ तमाम बीबियां सर की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अस्सलाम अलैक या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैक या अबना रसूलिल्लाह। ऐ मेरे भाई हुसैन, ज़ैनब का बयान, ऐ मेरा बाबा हुसैन सज्जाद का बहन, एक मर्तबा सज्जाद बीबी ज़ैनब सकीना से कहती है, सकीना तू बाबा को पुकार रही थी, ले तेरा बाबा आ गया। अब सोचिए नफसानियत ये बच्ची की, छोटी बच्ची है, बाबा को पुकार रही, कुछ ही देर पहले अपने बाबा को देखा ख्वाब में, आगे बढ़ती है, सर मुबारक को अपने गोद में लेती है, रिवायत के जुमले, चूमना शुरू किया, कभी आंखों को चूमा, कभी रुखसार को चूमा, कभी लबों को चूमा। अरे मैं अपने मसाइब क्या बयान करूं आपको, मैं अपने अल्फाज क्या बयान करूं। अरे खुद सकीना के बयान सुन लीजिए आप, खुद सकीना के मसाइब सुन लीजिए। हाथों में उठाया, या अबता मन खदबक पे दिमाए गए, मेरा बाबा अपने रुखसार अपने चेहरे को अपने खून से किसने रंग दिया। या अबसा मन का मन कतावरी देख, ए बाबा आपकी गर्दन को किसने काटा। ए बाबा या अबसा मन आई चमनी अला सिगर सिन्नी, ए बाबा इस नाजुक उम्र में मुझे यतीम किसने किया। या बचा मन लिलबायून बाकियात, ए मेरे बाबा ये आंखें जो बीबियों की रो रही है उनका सहारा अब कौन रहेगा। ए बाबा या बचा, ए मेरे बाबा मिन बाद वाह गुरबता, अब आप चले गए, ऐ वाह गुरबता हमारा अब कोई नासिर ना रहा। फिर दो जुमले, अजीब जुमले कहती है, या अबचा लई कुंद या लई चनी कुंचो लकल फिदा, या लई चनी कुंत मिन कबल हादल यौम अमिया, ए बाबा ऐसा क्यों ना हो गया इस मंजर को देखने से पहले, अरे सकीना की बसारत चली क्यों ना गई। अरे वह लकल फिदा, अरे काश सकीना आपके बदले शहीद हो जाती। बस ये जुमला कहना था। एक मर्तबा रिवायत कहती है जो है वो सकीना झुकती है, एक मर्तबा अपने बाबा का बोसा लेती है और फिर एक मर्तबा खामोश हो जाती है, अब कोई आवाज नहीं आती। जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा, अरे बच्ची की आवाज नहीं आ रही। जनाबे सकीना ज़ैनब से, जनाबे ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद जरा जाके देखो तो सही मेरे बच्ची का क्या हाल है। अब इमाम सज्जाद आते हैं, झुकते हैं, बस जैसे झुके उसी थड़ा उठ गए, बीबी का रुख किया, आंखों से आंसुओं का फव्वारा, ऐ फूफी अम्मा मेरी बहन चली गई बाबा के पास चली गई, इन्ना लिल्लाह वो इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे एक मर्तबा नन्नी सी कब्र बनाई गई, अरे भाई ने अपनी नन्नी बहन को हाथ में लिया, नन्नी कब्र की तरफ जो किसनदान के कोने में, वहां चलने गए, अभी उतारना चाहा, अजब नहीं जहरा की आवाज आई हो, ए मेरे सज्जाद मेरी अमानत को मुझे दे दे। अरे बकी से आई हूं लेने के लिए, अब फिकर न कर मैं सकीना को संभालूंगी, अब सकीना चैन से सोएगी। अरे वाह मुसीबता, वाह मजलूमा, वाह सुकैना, वाह हुसैना। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बिन यन्क़लब, मात समय हुसैन।